0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 FM. आई लव इट.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गए ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
7: हजार 97.1 FM।
2: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
8: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM।
13: You are listening 97.1 FM.

Better. The radio station for people who love music.

0: swiping, I'm loving it. Teddy, zara ye commercial to sun le.
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी, वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का। Hit music, entertainment, poetry, news and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.

सितम खुद देखे है खफा कोई, वफा भी करके है बुरा कोई, ऐसा भी करता है भला कोई। छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें, लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें, बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सब

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए। सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays.
10: Foot tapping music.
11: You are listening 97.1 FM.

0: ਥੱਲੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇਰੇ ਕਾਨੇ ਖੋਖਾ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ
1: commercial time
2: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham choose Roshid Hire Limited your trusted partner for safe comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas whether you need a local taxi airport transfer or vehicle rental Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.

Better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baseford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: It's commercial time.
5: Ohana, kaika khushbu, gosht ki zaika, aur Peshawar ka mehman nawazi.
6: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
5: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
6: जहाँ लजीज शनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
5: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
6: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
5: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
6: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
5: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
6: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
7: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
6: Peshawri Dera.
8: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
6: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
6: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
6: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
7: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
6: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
6: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस।
10: You are listening 97.1 FM.

नज़म से गजल बन गई, तू रोज़ी बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे ख़त्म कर अभी, वो गलतियाँ गिनती गई, नफ़रतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं।

0: This is a public service announcement.
1: It's commercial time.
2: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066. मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-201-07932।
6: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 87.1 FM पर।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आप
6: ठहरिए जरा ये कमर्शियल तो सुन ले.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
8: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
9: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का.
8: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स.
9: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट.
8: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह.
9: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है.
8: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS.
9: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट.
8: टेस्ट भी, वाइब भी.
10: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
11: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
10: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
11: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
10: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
11: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
12: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
10: Park Foods, जो नाम है मायार का.

0: दीजिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Get ready to move.
2: It's all about the beat.
3: Wow,
4: Only Tune Super Hit Channel.
5: Fizz on 97.1 FM.

You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: Music never sounded better.
8: Fazan 97.1 FM.
7: I love it.
9: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ,
3: भंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम करदे ने, सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी करदे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हां जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते जी, आयन खुश आमदीद, मरहबा, अहलन व सहलन, हला वल्ला, सबाल खैर एंड गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका होस्ट, तुहाड़ा यार बेली मित्र ते सजन मेजबान नफीस बंदा नाचीज जी, मुझे कहते हैं आर जे मुस्तगीस। एक शहर जाग रहा है, किसी घर में दिन की शुरुआत हो रही है, कहीं कोई खिड़की से बाहर कुदरत की खूबसूरती को देख रहा है, कहीं कोई अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर रहा है, कहीं किसी के हाथ में कॉफी का कप है, कहीं कोई अपने बर्थडे की पहली मुबारकबाद वसूल कर रहा है, कहीं किसी घर में शादी की खुशी है, कहीं कोई स्टूडेंट अपने टेस्ट या एग्जाम में पहली बार अपने नोट्स या फिर आखिरी बार अपने नोट्स देख रहा है, और कहीं कोई शख्स एक इम्पोर्टेंट जॉब इंटरव्यू के लिए खुद को रेडी कर रहा है, और इन सब के दरमियान हम यहाँ मौजूद हैं, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट समवेयर इन द पास्ट, बल्कि राइट हियर राइट नाउ हम लाइव हैं, लाइव फ्रॉम नॉटिंघम, दिस इज रेडियो फजा 97.1 FM एंड दिस इज योर ऑन आरजे, योर वाइब क्रिएटर, योर एनर्जी डीलर, आई एम नॉट जस्ट अ वॉइस, आई एम योर मॉर्निंग डोपामाइन, योर लॉक्ड इन विद द मोस्ट लिट मॉर्निंग शो इन द टाउन। जी तो कैसे हैं आपके हाल अहवाल, कई फहालू का संगे चल दे, हाउ आर यू एंड किंज दे होए पे हो। इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं, घर में हैं, कार में हैं, बाजार में हैं, अपनों में, घरों में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, बस में, या फिर किसी के बस में हैं, या बस अपने दिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सो डियर लिसनर्स, हम आपके साथ हैं एंड दैट्स व्हाट मेक्स द राइव रेडियो स्पेशल। और अब एक छोटी सी सेफ्टी रिमाइंडर उन तमाम ड्राइवर्स के लिए जो इस वक्त स्टीयरिंग सीट पर मौजूद हैं, सफर चाहे शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग, सेफ्टी शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। सामने वाली गाड़ी से मुनासिब सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखिए, अपने साइड मिरर मुसलसल चेक करते रहिए, सीट बेल्ट जरूर फास्टन कीजिए, स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए और ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन हर गिज ना कीजिएगा। ओवरटेकिंग करते वक्त खास एहतियात करें, लेन डिसिप्लिन मेंटेन रखिए और बिलावज अपनी लेन चेंज ना करें। ड्राइव करते हुए मोबाइल फोन से दूर रहिए, नींद या थकन महसूस हो तो यू शुड टेक अ ब्रेक, इंडिकेटर्स का दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए और सबसे बढ़कर कीप योर आईज ऑन द रोड एंड योर माइंड ऑन द ड्राइव। अ सेफ जर्नी इज ऑलवेज बेटर देन अ फास्ट जर्नी। जल्दी नहीं, एहतियात से चलें, स्टे अलर्ट, ड्राइव सेफ, रीच होम सेफ, क्योंकि योर डेस्टिनेशन कैन वेट बट योर लाइफ कैन नॉट। और अब जरा बात हो जाए आज के स्पेशल मोमेंट्स की, अगर आज आपका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन बहुत मुबारक हो, मे योर डे बी फिल्ड विद लाफ्टर, हैप्पीनेस एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज। और हमारी तरफ से बस यही खूबसूरत सी विश कि जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। और अगर आज आपके घर में वेडिंग, एंगेजमेंट, एनिवर्सरी या फिर कोई और खुशी का मौका है तो many many best wishes, may this beautiful occasion brings more love, happiness and countless memorable moments in your life. तमाम students के लिए अगर आज आपका exam है, test है, presentation है, तो best of luck, very best of luck. पुरसकून रहिए, अपनी मेहनत पर यकीन रखिए और अपने पूरे focus के साथ अपना best दीजिए, 100% दीजिए. Stay confident, you have got this, boy. और जो लोग आज किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपके लिए बेस्ट विशेस एंड गुड लक, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, बी योरसेल्फ, अपनी सलाहियत को भरपूर अंदाज में सामने लाइए। और अगर आज जिंदगी में कोई न्यू बिगनिंग है, नई जॉब है, यूनिवर्सिटी, बिजनेस या जिंदगी का कोई और नया चैप्टर है, तो हमारी तरफ से वार्मेस्ट विशेस, मे दिस न्यू जर्नी ब्रिंग यू ग्रोथ, सक्सेस एंड प्लेंटी ऑफ रीजन टू स्माइल। खली भली, यस, डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट जर्नीज, डिफरेंट डेस्टिनेशंस, बट फॉर दिस मोमेंट वी आर ऑल हियर टुगेदर। और इसीलिए रेडियो फजा लाइव शो में आपका दोस्त, आपका होस्ट, तुहाड़ा यार बेली मित्र ते सजन मेजबान नफीस बंदा नाचीज जी, मुझे कहते हैं आरजे मुस्तगीस। From Nottingham to the surrounding communities, to our listener across the United Kingdom, and to everyone listening online from anywhere around the world, welcome, khushamdi, sat bismillah ji ayanu. आप जिस मुल्क से भी हमें सुन रहे हैं, जिस जबान से जुड़े हैं, जिस बैकग्राउंड से भी ताल्लुक रखते हैं, दिस स्पेस इज फॉर यू. तो एक बार फिर गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो. ट्यून इन रेडियो फजा 97.1. यहाँ पे वक्त है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का. ब्रेक के उस पार मिलेंगे, जाना कहीं नहीं है, मेरे साथ जुड़े रहिए.
1: इट्स कमर्शियल टाइम.
2: ओखाना कढ़ाई की खुशबू, गोश्त की जायका और पिशावर का मेहमान नवाजी.
3: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
2: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नॉटिंघम में आ गया ना यारा.
4: जी हाँ, तैयार हो जाए, क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कढ़ाई की खुशबू आपको खींच लाएगी.
4: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा.
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
4: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का.
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है.
2: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी.
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें.
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816, एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड, लेंटन, नॉटिंघम, 972ET,
3: पिशावरी डेरा.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
6: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया. अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए.
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
6: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स. चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम, या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं.
7: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स.
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं.
7: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम. तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट.
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें.
8: गेट रेडी टू मूव,
9: इट्स ऑल अबाउट द बीट.
10: वाओ एफएम,
11: ओनली ट्यून सुपर हिट चैनल
12: फिज़ ऑन 97.1 एफएम.

यहाँ पे वक्त है स्पेशल मोमेंट का, स्पेशल सेगमेंट का। आज का पैगाम क्या है, कोट ऑफ द डे क्या है, आज का खूबसूरत ख्याल है, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। यानी कामयाबी आखिरी मंजिल नहीं, नाकामी इख्तिताम नहीं, असल कामयाबी यह है कि इंसान आगे बढ़ता रहे। और इसी खूबसूरत थॉट के साथ खूबसूरत म्यूजिकल ट्रैक एंजॉय कीजिए।

डियर लिसनर, आज मेरा लाइव पहला प्रोग्राम है आप लोगों के साथ और माइक पे बैठते हुए मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि मैं आपके साथ आज यहाँ पे मौजूद हूँ और आप मेरे साथ मौजूद हैं। अपने होने का एहसास दीजिए, लाइव कॉल कीजिए, कमेंट्स कीजिए 0115-7100971 और बारी है पर्सनालिटी ऑफ द डे की। आज की शख्सियत हमारे साथ, आज की शख्सियत कौन है? द वन एंड ओनली मिस्टर बीन।

वेलकम बैक डियर लिसनर। आज की सक्सेस स्टोरी हमें एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाती है जिसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना दिया। एंड द नेम इज वन एंड ओनली द लेजेंड, हम सब की बचपन की याद। और जहां तक मुझे लगता है, मैं फील करता हूँ कि इनके बगैर बचपन अधूरा था। द नेम इज मिस्टर बीन। दुनिया इन्हें मिस्टर बीन के नाम से जानती है। दरअसल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तालिब इल्म थे। इन्हें बोलने में हकलाहट का सामना था, और लेकिन ऑक्सफोर्ड सॉरी हकलाहट से जबान जो है वो स्लिप कर गई है। लेकिन ये बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ऑक्सफोर्ड में उन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियत को पहचाना और कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा, और यहाँ से शुरू होता है नया चैप्टर। उन्होंने बहुत सारे कामयाब जो है प्रोजेक्ट्स दिए, जिनमें ब्लैक एडर जो है इनका बहुत कामयाब प्रोजेक्ट है। अपनी सलाहियत जो है उनका लोहा मनवाया, और फिर मिस्टर बीन का एक ऐसा किरदार तख्लीक किया जिसे समझने के लिए किसी खास जुबान की जरूरत नहीं है। चेहरे के तासरात, खामोश अदाकारी और बॉडी लैंग्वेज, इन सब की ताकत जो है उन्होंने खुद को ताकतवर बनाया इन तमाम चीजों को अपना कर। ये कहानी हमें एक खूबसूरत सबक देती है। जिंदगी में कामयाबी के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास हर चीज मुकम्मल हो। No one is perfect here. जरूरी ये है कि आप अपनी मौजूदा सलाहियत को पहचाने और इसे मुसलसल बेहतर बनाते रहिए। जिस चीज को दुनिया आपकी कमजोरी समझती है, मुमकिन है कल वही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाए। और मिस्टर बी ने साबित किया है कि कभी कभी इंसान को कामयाब होने के लिए अपनी कमजोरी छुपाने की नहीं, इसे अपनी ताकत में तब्दील करने की जरूरत होती है।

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्डन किंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: You are playing. We are playing. Fazan 97.1 FM.

सो वेल लिसनर्स, 0115710097 ये है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, यानी कि मेरा और आपका रابطे का जरिया. सो ये ना सिर्फ एक नंबर है बल्कि ये वो रास्ता है, ये वो पाथ क्रिएट करता है आपके और मेरे बीच, जिसके थ्रू मैं आपसे कर सकती हूँ तमाम तरह दिल की बातें और आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं अपने दिल का हाल. सो अगर कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है या आप किसी चीज को लेकर है थोड़ा सा भी कंफ्यूज, तो कंफ्यूज नहीं होना बल्कि हमसे कर लेना है शेयर, क्योंकि बाज़ूकात इंसान का दिल करता है कि इंसान के साथ कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो उसे सुने और समझे. समटाइम्स हमें ओपिनियन नहीं चाहिए होता, समटाइम्स हमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए होती, समटाइम्स हम बस ये चाहते हैं कि कोई जस्ट हमें सुने और हमें अंडरस्टैंड करे. सो अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में है किसी पे ऐसे शख्स की कमी, तो हम आपकी उस कमी को दूर कर सकते हैं, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने दिल के ख्यालात. साथ ही साथ लिसनर्स, मैं आपको बताती चलती हूँ कि www.radiofaza.com.uk है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट. सो ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि बन सकते हैं हमारी इस फैमिली का हिस्सा. सो अगर आप बनना चाहते हैं रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब का हिस्सा, या फिर जाना चाहते हैं किसी भी किस्म की मालूमात हमसे रिलेटेड, रेडियो से रिलेटेड, तो हर तरह की मालूमात आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट पे. और अगर आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी बहुत सिंपल सा है, आसान सा है, आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं. सो सिंपली आपको जाना है एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहां जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे हो जाएगा डिस्प्ले. जी हाँ, यही है हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन. सो बिना टाइम वेस्ट किए कर लीजिए इसे इंस्टॉल और बन जाइए हमारी इस फैमिली का हिस्सा. सो वेल लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं. सो एक एक करके मैंने आपसे तकरीबन तमाम तरह शेयर कर दिए हैं. अभी आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और आप हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और मेरे ये 2 से 3 मिनट की मोटिवेशन से आप थोड़े से एक्टिव हो चुके होंगे और अब तक आपने अपना बिस्तर छोड़ दिया होगा. वेल, अगर आप अभी भी हैं थोड़ी सी सुस्ती में मुबतला, तो आपको एनर्जेटिक करने के लिए मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं. सो आइए मेथड नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं यहाँ. सो लिसनर्स, जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि एक अच्छे खूबसूरत दिन का आगाज करें एक अच्छे हेल्दी मील के साथ, तो आज भी यही कहूंगी कि सबसे पहले आप एक अच्छा हेल्दी मील ले लीजिए एज अ ब्रेकफास्ट, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि ब्रेकफास्ट हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होता है. और ये तो बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट को कर देते हैं स्किप. सो बिल्कुल भी मत किया करें, क्योंकि एक नया दिन शुरू करने के लिए आपको जरूरत होती है बहुत सारी एनर्जी की. और एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है अच्छे हेल्दी मील से. सो अगर आपसे कुछ ज्यादा खाने नहीं होता तो थोड़ा सा ले लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर खाया करें, क्योंकि आपने एक पूरा दिन गुजारना होता है, बाहर की दुनिया को फेस करना होता है, ऑफिस, घर, फिर उसके बाद स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, हर जगह जाने के लिए बहुत सारी हिम्मत की जरूरत होती है और हिम्मत एनर्जी मिलती है सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट से. तो जैसे ही आप ब्रेकफास्ट करते हैं आप खुद ब खुद ही एनर्जेटिक हो जाते हैं. अब रही बात माइंड को रिफ्रेश करने की, सो उसका तरीका है मेरे पास मौजूद. आइए मिलकर सुनते हैं एक ऐसा एनर्जेटिक सा ट्रैक जो कि आपके मूड को कर देगा इंस्टेंटली बूस्ट अप. साथ ही साथ आपको मालूम है कि म्यूजिक को एज अ थेरेपी भी कंसिडर किया जाता है. सो हम भी म्यूजिक को एज अ थेरेपी लेंगे और ये एनर्जेटिक सा ट्रैक सुनेंगे. सो डियर लिसनर्स, आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह के ट्रैक्स हैं पसंद, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम प्रोग्राम वो सभी ट्रैक्स शामिल करें जो हमारे लिसनर्स सुनना चाहते हैं.

ऑलराइट सर, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से तमाम तरह सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। और एक बार फिर से बताती चलती हूँ कि मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो डीवा डायलॉग। और ये सिंपल सा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। सो अगर आपका भी शुमार है उन्हीं सब लिसनर्स में से जिन्होंने अभी अभी हमें ट्यून किया है, सो आप जल्दी से जाकर हमें बताइए।

कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और दुनिया के किस कोने से हमें ट्यून कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो कि इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ड्राइव करते करते आपका ये सफर बन जाए और भी मजीद खूबसूरत, सो इस सफर को खूबसूरत बनाया जा सकता है किस तरह से, सिर्फ और सिर्फ हमारी खूबसूरत सी आवाजों को ट्यून करके। सो आप हमें फजा डैप के थ्रू बआसानी ट्यून कर सकते हैं और इस सफर को बना सकते हैं खूबसूरत, यादगार और मेमोरेबल। सो अगर आप हैं रास्ते में या पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब, तो आपका ये सफर बनने वाला है खूबसूरत सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब के संग। सो लिसनर्स, बात कर लेते हैं आज के दिन के हवाले से। सो आज है ट्यूजडे 1 सितंबर, यानी कि एक नया दिन, साथ ही साथ एक नया मंथ। और आज फाइनली सितंबर स्टार्ट हो चुका है, और अगस्त जिसे बहुत सारे लोग डिक्लेयर कर रहे थे कि इट्स द लॉन्गेस्ट मंथ, फाइनली हो चुका है मुकम्मल। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो अगस्त का महीना पसंद है क्योंकि इट्स माय बर्थडे मंथ। सो अगस्त में हर मेरी बर्थडे आती है, और भी इसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स हैं अगस्त में। सो इस हवाले से मुझे अगस्त बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कल जब मेरी अपनी फ्रेंड से बात हो रही थी, सो शी टोल्ड मी कि फाइनली अगस्त द एंड हुआ, और उसके अकॉर्डिंग ये मंथ बहुत लॉन्गेस्ट था। कहती है कि इतना लंबा महीना था कि गुजर ही नहीं रहता। वेल, आज हम बकायदा तौर पर वेलकम करते हैं सितंबर को, क्योंकि एक नया मंथ अपने साथ बहुत सारे नए चैलेंजेस को, नए ड्रीम्स को, साथ ही साथ नए एम्बिशंस को लेकर आता है। और वैसे भी कहा जाता है कि सितंबर का महीना आते ही दिल में एक नया जोश, एक नया वलवला भी उजागर होता है, क्योंकि सितंबर में फाइनली जो गर्मी थोड़ी सी स्टार्ट होती है वो भी अपने एंड मराहल की जानिब रवा दवा होती है। साथ ही साथ किसी ने क्या खूब कहा है, सितंबर इज द जनवरी ऑफ ऑटम। सो नए रेजोल्यूशंस का वक्त आ चुका है। और भी सितंबर के हवाले से बहुत सारे कोट्स मौजूद हैं, लेकिन एक और हसीन कोट जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो कुछ यूं है, हैप्पीली वी नोटिस दैट स्प्रिंग इज रिफ्रेश एंड सितंबर इज द मंथ ऑफ नीड यू। सो अगर आपका भी पिछला मंथ कुछ इस तरह से गुजरा है कि आप बहुत ज्यादा सुस्ती में मुब्तला रहे, या फिर आपके बहुत सारे मिशन थे जिनको आपने कंप्लीट या फिर फुलफिल करना था जो somehow आप नहीं कर सके, सो आपके पास एक नया चांस है, एक नई अपॉर्चुनिटी है इस आने वाले नए मंथ के साथ। सो कोशिश करिएगा कि जो टास्क आपके अगस्त में कम्प्लीट नहीं हुए, उन्हें आप सेप्टेम्बर में कम्प्लीट कर ले, ताकि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। सो somehow अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं अगस्त के मंथ में, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी उस तरह से वर्क नहीं की इन अगस्त, तो अब एक नया चांस है आप सभी के पास, यानी कि एक नया रिमाइंडर है कि आप इस मंथ में अपने उन तमाम सारे वीकनेसेस पर काम कर सकते हैं, खुद को स्ट्रांग बना सकते हैं और खुद को आगे लेकर आ सकते हैं। क्योंकि आज इस नए मंथ का पहला हफ्ता चल रहा है, तो मोटिवेशन को कर देते हैं थोड़ा सा डबल। और एक बहुत ही प्यारा सा कोट आप सभी से मैं शेयर करती हूँ, ऑल अवर लॉसेस आर रिस्टोर्ड इन सितंबर। इस नए हफ्ते अपने गोल्स को दोबारा सेट कीजिए, मंडे गुजर चुका है, ट्यूसडे आ चुका है, आप सुस्ती का कोई बहाना नहीं चलेगा। और साथ ही साथ एक और खूबसूरत सा कोट आपसे शेयर करती हूँ जो कि सितंबर से रिलेट कर रहा है। September, you are the door away to the season that awakens my soul. So, अपने सुकून को जगा दीजिए और इस नए हफ्ते को अपनी जिंदगी का बेहतरीन हफ्ता बना दीजिए। सो लिसनर्स, मुझे जरूर बताइएगा कि इस सितंबर का सबसे बड़ा आप सभी का क्या गोल है, क्या आप कोई नई हैबिट इख्तियार करना चाहते हैं, या बस इसी सुहाने से मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं। सो बताने के लिए आपको जाना होगा हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 01157100971। सो बिना टाइम वेस्ट कीजिए, जल्दी से कर लीजिए इसको सेव। सेव करने के बाद आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि इस आने वाले नए मंथ के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं। मे भी हो सकता है कि मैं आपको कोई भी अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस दे दूं, या फिर इसके अलावा आप कोई भी खूबसूरत
सा पैगाम जो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक रेसिपी चाहिए हो। क्योंकि ये ना सिर्फ एक नंबर है बल्कि एक रابطے का जरिया है आपके और मेरे दरमियान। सो इस समय के थ्रू आप मुझसे वो सभी बातें कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं अपने किसी भी चाहने वाले से। साथ ही साथ आप अपने किसी भी लव्ड वन को कोई भी प्यारा सा गाना डेडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी कि सितंबर गोल से रिलेटेड कि इस आने वाले नए मंथ का क्या गोल है, तो अगर मैं आपसे अपने गोल्स शेयर करूं तो एज सच मेरे कोई खास गोल्स नहीं है, क्योंकि आई फील लाइक कि पिछले मंथ भी मैं वो सभी एक्टिविटीज अच्छे से परस्यू कर रही थी जिनको मैंने इस मंथ भी करना है। बट हाँ, मेरा एक न्यू गोल है जो कि मैंने रिसेंटली सोचा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस मंथ में उसको स्टार्ट करूँ। आई नो कि कंप्लीट तो नहीं हो सकता क्योंकि काफ़ी डिटेल वर्क है, लेकिन जब तक हम किसी भी नई चीज़ का आगाज नहीं करते तो इख्तिताम कैसे हो सकता है। सो मेरा सितंबर का गोल ये है कि मैंने सोचा था कि मैं डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस सीखूँ। मुझे बहुत शौक है कि मैं हर तरह की लैंग्वेज बोलूँ, मतलब हर तरह की नहीं, लेकिन मुझे मैक्सिमम बहुत सारी लैंग्वेज आती हूँ। सो करंटली जो तमाम तरह लैंग्वेज मुझे आती हैं उसमें उर्दू, इंग्लिश एंड लिटिल बिट कोरियन और साथ ही साथ पश्तो। सो ये चार तरह की लैंग्वेज हैं जिनको मैं थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर लेती हूँ, लेकिन रिसेंटली मुझे एक नया शौक डेवलप हुआ कि मुझे जर्मन सीखनी चाहिए। सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जर्मन काफ़ी मुश्किल होती है, बट मेरे नज़दीक कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। अगर आप अहद कर लें, इरादा कर लें और आपका इरादा हो मजबूत तो आप वो कर सकते हैं। सो मेरा तो यही गोल है सितंबर को लेकर के इस नए मंथ में मैं इसका आगाज करूंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता गिरते गिरते स्टेप बाय स्टेप सीख जाऊंगी। सो ये लिसनर्स, अगर आप भी कोई इस तरह की न्यू एक्टिविटी या फिर हॉबी स्टार्ट करने जा रहे हैं इन सितंबर, सो डू लेट मी नो। बाकी एक कि मैं अपनी इस जर्नी को आपसे भी साथ ही साथ शेयर करती रहूंगी कि मुझे किस तरह और कैसे कैसे क्या चीज़ कैसे लगी, और अगर कोई भी डिफिकल्टी आई तो वो भी आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको अपने दिन से रिलेटेड, अपनी जिंदगी से रिलेटेड हर तरह के पहलू से आगाह करूँ। सो आई फील लाइक अब तक हमारे जितने भी मेल हजरात, सॉरी मेल लिसनर्स हैं, वो तो अपने ऑफिस बिजनेस की तरफ रवाना हो चुके होंगे और पीछे घर पर मौजूद होंगी हमारी डीवल। सो स्पेशली ये प्रोग्राम आप ही के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो आप बिला झिझक हमसे कुछ भी शेयर कर सकती हैं और साथ ही साथ बता सकती हैं कि आपको मेरी बताई हुई तमाम तर रेमेडीज कैसे लगी, रेसिपीज कैसे लगी, और अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक रेसिपी चाहिए तो उसके लिए भी डू लेट मी नो। सो डियर लिसनर्स, इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। आई नो गपशप का सिलसिला चल रहा है, गुफ्तगु बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन कमर्शियल ब्रेक भी बहुत जरूरी है क्योंकि कमर्शियल ब्रेक के बिना प्रोग्राम आप तक नहीं पहुंच सकता। सो जी आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब और आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार। तो आपने कहीं पर भी नहीं जाना, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहना है। So listeners, we will be right back after a very short break. Stay tuned with us.

चलो लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुश आमदीद, और मैं हूँ आपकी आरजे ज़ैनब फातिमा। वेल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अभी तक आपने बकायदा तौर पर इस खूबसूरत दिन का आगाज कर लिया होगा और अभी आप अपने किसी न किसी काम में मगन होंगे। सो अगर आप अभी भी किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत में है तो आपके लिए ही हमने ऑर्गेनाइज़ किया है अपना ये बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा सेगमेंट, क्योंकि ये सेगमेंट ना सिर्फ आपके लिए लेकर आता है बहुत सारी मोटिवेशन, साथ ही साथ आपको ज़िंदगी को गुजारने के डिफरेंट तरह के असूल भी मालूम होते हैं। सो अगर आप भी हो किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही हो, बॉदर कर रही हो, या आप किसी भी दो चीज़ों को लेकर हो रहे हों कन्फ्यूज, तो ये आपके लिए ही है। सो हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे ही इंस्पिरेशनल प्लस मोटिवेशनल कोट्स, जो कि ना सिर्फ बदल देंगे आपके आज के इस दिन को, बल्कि साथ ही साथ आपकी जिंदगी में भी एक अच्छा पहलू लेकर आएंगे। सो शेयर करती हूँ आपके साथ आज का फर्स्ट कोट। सो चीयर्स टू अ न्यू मंथ एंड अनदर चांस फॉर अस टू गेट इट राइट। सो बेसिकली जैसे कि आज स्टार्ट हो चुका है सितंबर, सितंबर मींस अ न्यू मंथ, न्यू सनशाइन एंड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। सो ये कोट हमारे आज के इस डे से ही रिलेट कर रहा है, और वैसे भी लाइफ कैन बिकम ओवरवॉर्मिंग एंड वी ऑल मेक मिस्टेक्स। सो मिस्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम जिंदगी में कुछ भी काम करते हैं, अगर आप कोई भी न्यू चीज़ ट्राई करते हो तो आई नो पहली मरतबा बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं, लेकिन असल इंसान वही होता है जो कि ना सिर्फ अपनी मिस्टेक से सीखता है बल्कि अपने उन एक्सपीरियंसेस का पॉजिटिव एडवांटेज लेता है। सो बेसिकली ये कोड हाईलाइट करता है फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू मंथ और कहता है कि द फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू मंथ इज लाइक अ साइकोलॉजिकल रीसेट बटन, इट एक्ट्स लाइक अ क्लीन स्टेट वेयर योर पास्ट फेलियर्स नो लॉन्गर डिफाइन यू। सो आपको ये दिन मोटिवेट करता है, ना सिर्फ मोटिवेट करता है बल्कि एक नया चांस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से आप अपने पास्ट मिस्टेक्स को फिक्स कर सकते हैं, या जो मिस्टेक्स आपसे हो चुकी हैं सो हो चुकी, कभी भी उन चीज़ों पर, उन कामों पर अशेम्ड मत हुआ करें जो आपने अपने पास्ट में या अपनी गुजरी हुई जिंदगी में किए हों, क्योंकि अगर आप वो काम ना सर अंजाम देते तो आज आप इस मुकाम तक ना पहुंच सकते। सो आज आप जो भी कुछ हैं या फिर जहां भी खड़े हैं वो इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि आपने अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखा है। सो व्हेन आई वाज इन अ यूनिवर्सिटी, तो मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज हैं जो कि अक्सर औकात क्या करते हैं, पुरानी एल्बम्स देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, वीडियोज देखते हैं, और हमेशा कहते हैं कि ओह उस टाइम पर मैं कितना अचीव या फिर क्रिंच हुआ करता था। सो मैं हमेशा उनसे भी यही कहती हूँ कि कभी भी खुद पर अशेम फील मत करें, क्योंकि आई नो वक्त के साथ साथ हम इंसान सीखते हैं। कोई भी ऐसा इंसान तो होता नहीं है कि जो डे वन से ही परफेक्ट हो या फिर उसे सोसाइटी में मूव करने का नॉलेज हो। सो अगर आप वो मिस्टेक्स करेंगे तभी आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां आप आज मौजूद हैं, और अगर आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो इट मीन्स आपने अपनी जिंदगी से कोई सबक हासिल नहीं किया। सो इसीलिए कहा जाता है फोकस ऑन होप नॉट रिग्रेट इंस्टेंट ऑफ, कि आप ये सोचते रहें कि अच्छा मैं पास्ट में ऐसा था या फिर फला मोमेंट पे मैंने ये बहुत क्रिंज हरकत की। आप बस फोकस करें कि आप ये जो न्यू 30 डेज आपकी जिंदगी में आ चुके हैं किस तरह से आप इनको खूबसूरत बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे और अपनी जिंदगी के लिए कुछ नया प्रोडक्टिव करेंगे। सो ये कोड शिफ्ट करता है आपका फोकस पास्ट से फ्यूचर की जानिब। सो इट इनकरेज यू टू वेलकम द न्यू डे विद ऑप्टिमिज्म, जॉय एंड एक्टिव एनर्जी। और साथ ही साथ इस चीज को भी हाईलाइट करता है द कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। सो अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ नया करें सो वेलकम करें आज के इस न्यू डे को, वेलकम करें सितंबर को। सो द लिसनर्स, ये था आज के लिए आप सभी के लिए हमारा पहला इंस्पिरेशनल प्लस मोटिवेशनल कोट। आई होप यू गेट माय पॉइंट। साथ ही साथ अगर कोई भी चीज़ आपको ना समझ आई हो सो यू कैन आस्क मी 0115710971 थ्रू दिस नंबर।
लिसनर्स, जहाँ इतनी मोटिवेशन की बात हो वहां फिर कुछ एंटरटेनमेंट की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता. आई नो आप सभी सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह इतना भाषण सुनने का दिल नहीं करता. सो इसीलिए हमने प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से रखा है के साथ ही साथ हम थोड़ा म्यूजिक और गॉसिप्स को भी ऐड करते रहते हैं ताकि हमारे लिसनर्स बोर ना हो. तो आइए मिल कर सुनते हैं कोई खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक. वेल आप भी बता सकते हैं कि आपका कौन सा ट्रैक है पसंदीदा. तो पूरी कोशिश यही की जाएगी कि प्रोग्राम का हिस्सा उसी ट्रैक को बनाया जाए. तो फिलहाल के लिए हमें एक सॉन्ग रिकमेंडेशन आई हुई है, तो अभी हम वही गाना सुनते हैं और इस ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे.

कैसे हैं? तो वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी की खिदमत में हाजिर हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा। तो दिल इतना बताइएगा कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक। आप भी अपने पसंदीदा ट्रैक्स को बना सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा। किस तरह से 01157100971 इस नंबर पे जाके सिंपली आपको हमें टेक्स्ट करना होगा और टेक्स्ट करने के साथ ही बताना होगा कि आपको किस तरह के ट्रैक्स हैं पसंद। या आप अपने किसी भी चाहने वाले को कोई भी प्यारा सा ट्रैक करना चाहते हैं डेडिकेट। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी गानों को शामिल करें अपने इस प्रोग्राम में। लिसनर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आज के सेकंड मोटिवेशनल प्लस इंस्पिरेशनल कोट की जानिब। आज का जो हमारा सेकंड इंस्पिरेशनल कोट है वो कुछ यूं है, द बिगिनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क। बेसिकली जब भी हम किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं शुरू में जो सबसे बड़ी रुकावट हमें फेस करनी पड़ती है वो होती है हमारी खुद की सुस्ती काहली, यानी कि ये एक थॉट जो हम डेली बेसिस पर सोचते हैं कि अच्छा क्यों ना हम ये काम थोड़ी देर बाद कर ले, या आज का काम कल कर लेते हैं, या फिर कल का काम कर लेते हैं परसों। ये वो थॉट्स होती हैं जो कि जब भी हम कोई न्यू काम या टास्क या गोल स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में पॉप अप करती हैं। बेसिकली हम बहुत ज्यादा वक्त सिर्फ यही सोचने में प्लान करने में जाया कर देते हैं। ये कोट हमें सिखाता है कि सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि पहला कदम उठाने ही से सब कुछ मुमकिन हो सकता है। और वैसे भी कहा जाता है कि पहला कदम उठाना ही सबसे इम्पोर्टेंट और मुश्किल काम होता है। वेंस यू टेक द फर्स्ट स्टेप हाफ द बैटल इज ऑलरेडी वन। जब आप बिल्कुल एक नए महीने का स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपने एक्शंस का भी स्टार्ट करें। आपका पूरा महीना अच्छा तभी गुजरेगा जब आप स्टार्टिंग से एक पॉजिटिव टोन के साथ अपने इस वीक को स्टार्ट करेंगे और अपने इस मंथ को स्टार्ट करेंगे। ये पहली शुरुआत आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती है जो आपको पूरे 30 डेज तक एक्टिव और मोटिवेटेड रखती है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने इस मंथ का स्टार्ट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना चाहते हैं या फिर वही डल थका थका फील करना चाहते हैं। वैसे भी ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप उनके लिए एक्शंस नहीं लेते तब तक आपके वो ख्वाब धरे के धरे रह जाते हैं। प्लानिंग इज कम्प्लीटली यूजलेस विदाउट एग्जीक्यूशन। ये कोड हमें ये भी याद दिलाता है कि नया महीना पहले दिन को ही स्ट्रांग फाउंडेशन देने का नाम है। अगर आप पहले दिन से ही एक अच्छा स्ट्रांग स्टेप उठाएंगे तभी जाकर आपका ये पूरा महीना अच्छे से गुजरेगा और आप अपने उन ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। मैं आपको दूसरों की क्या ही एग्जाम्पल दूं, अगर मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल दूं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम अ वेरी लेजी पर्सन। जब वीकेंड्स होते हैं अक्सर औकात तो मैं बहुत कुछ प्लान करती हूँ, यानी कि फ्रेंड्स हैंग आउट, साथ ही साथ स्किन केयर, लॉट ऑफ थिंग्स, कोई न्यू मूवी सीरीज या फिर कुछ नया स्टार्ट करने का। लेकिन क्योंकि मैं इतना सुस्ती में पड़ी रहती हूँ और बस मैं सोचती रहती हूँ कि अभी शुरू करती हूँ और इसी स्नान में बहुत सारा वक्त गुजर जाता है और अगेन एक सुबह से शाम आ जाती है और कुछ इसी तरह से इसी सोच में मुब्तला रहते रहते वीकेंड का भी हाथमा हो जाता है। इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आपने बिल्कुल भी लेजी नहीं होना और अभी एक नया महीना शुरू हो चुका है और सितंबर अपने साथ बहुत सारी नई सनशाइन भी लेकर आया है हम सभी के लिए। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपने इस महीने को अपने जिंदगी का बेस्ट मंथ बनाना है। साथ ही साथ कोई भी चीज़ अगर आपको डिस्टर्ब करती है किसी भी हवाले से तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात होता है कि जब हम कुछ नया प्लान करते हैं या फिर कोई न्यू गोल अचीव करने के लिए फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह से शुरुआत करें, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग समटाइम्स एडवाइस बहुत अच्छे से वर्क करती है। आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं या फिर अपने किसी भी चाहने वाले से जो आपको लगता हो कि वो आपको समझता है, अंडरस्टैंड करता है और आपको एक पॉजिटिव एडवाइस देगा।
लिसनर्स, ये था आज का हमारा मोटिवेशनल सेगमेंट. आई होप आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा. और इस हवाले से अगर आपकी भी कोई क्यूरी है सो यू कैन आस्क मी 0115710971 थ्रू दिस नंबर. वेल, हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि प्रोग्राम का आगाज हमेशा मोटिवेशनल हो ताकि आपका बाकी का पूरा दिन खूबसूरत, मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव गुजरे. सो इसी इस्तेमाल में प्रोग्राम में वक्त हुआ है अभी एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब. आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार, तो आपने कहीं पर भी नहीं जाना और इसी तरह से डीवा डायलॉग का हिस्सा बने रहना है. हम जल्दी वापस आ जाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद अस.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
8: Radio Bazaar 97.1 FM.
9: Hit music. Back to back.

वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैप के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेजबान आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कंफर्ट प्लेस द डीवा डायलॉग, जो कि स्पेशली ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारी तमाम तरह डीवास के लिए। ऐसी डीवास जो कि ना सिर्फ अपने घर में बेहद काम करती हैं, फैमिली को सपोर्ट करती हैं, बल्कि वो तमाम तरह फीमेल जो कि घर से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया का सामना करती हैं और वहाँ पर भी अपना लोहा मनवाती हैं। वैसे भी अगर हम आजकल की दुनिया का मुहासबा करें तो सोसाइटी बहुत टफ हो चुकी है। नाउ फीमेल को बहुत सारा वर्क करना पड़ता है और जितनी भी हमारी डीवाज हैं जो कि वर्किंग वुमेन हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर सकती हैं कि डेली बेसिस पर घर से बाहर जाना, ऑफिस का वर्क करना, फिर घर आकर फैमिली को टाइम देना, फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना और बहुत सारे काम काज करना। आई नो इट्स रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि जब से मैंने ये जॉब स्टार्ट की है तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि इट्स रियली हार्ड कि आप अपने घर की ज़िंदगी को और अपनी बाहर की ज़िंदगी को साथ साथ प्रॉपर बैलेंस लेकर चलें, क्योंकि जब आप एक जानब फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फोकस दूसरी जानब से रह जाता है। लेकिन जो हमारी डीवास डेली बेसिस पर इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल रही हैं, सल्यूट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है और अगर आप इसको परफेक्टली कर रही हैं देन यू आर अ आइकॉनिक डीवा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम स्पेशली ऑर्गेनाइज किया जाता है तमाम तरह डीवास के लिए, तो क्योंकि मर्द हजरात तो इस वक्त तक अपने ऑफिस की तरफ रवा दवा हो चुके होते हैं, सो अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का अगला सेगमेंट। और जैसा कि आप सभी को है मालूम कि मोटिवेशनल बातों के बाद वक्त आ जाता है थोड़ी सी स्किन केयर का, सो हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी सी रेमेडीज, ऐसी रेमेडीज जो कि ना सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी बल्कि होंगी भी नेचर से भरपूर। सो आपको किसी भी तरह के ऑर्गेनिक चीज़ों से हटकर केमिकल्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि नेचर ने हमें क्या दिया है, बट अगर मैं आपको इसका सिंपली आंसर करूँ तो नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, क्योंकि नेचर की चीज़ों से ना सिर्फ हम अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं बल्कि अगर बात की जाए स्किन केयर की, हेल्थ केयर की, तो नेचर वहाँ भी हमें काफ़ी हेल्प कर रही है।

स्टार्ट करते हैं आज का ये ब्यूटी रेमेडी सेगमेंट, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना उससे पहले एक अदद खूबसूरत सा ट्रैक सुन लिया जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये बड़ा प्यारा सा ट्रैक। अच्छा ट्रैक थोड़ा सा इमोशनल है, बट आपने इमोशनल नहीं होना क्योंकि मैं हूं ना। हम करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी गॉसिप्स। सो ये गाना हमें हमारी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर ने रिकमेंड किया है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने तमाम दर लिसनर्स को कभी भी निराश नहीं करते, तो इसीलिए हम इस ट्रैक को शामिल करने जा रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में। सो आप सभी से मुलाकात होती है इस खूबसूरत से प्यारे से ट्रैक के उस पार। तो स्टे ट्यून विद अस।

ऑलराइट जी लिसनर्स, उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा और अब स्टार्ट करते हैं आज का ब्यूटी रेमेडी सेगमेंट। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ घरेलू टोटके, कुछ ऐसे टोटके जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनते हैं लेकिन ऑनेस्टली ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं और काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। लास्ट वीक जो तमाम थे ब्यूटी रेमेडीज मैंने आप सभी से शेयर की थी तो उसका फीडबैक मुझे मौसूल हुआ और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप सभी ने वो रेमेडीज ट्राई की और आप सबके लिए भी वो उतनी ही इफेक्टिव थी जितनी वो रेमेडीज मेरे लिए इफेक्टिव रही। सो इसीलिए आज भी कुछ रेमेडीज लेकर मैं खिदमत में आपके हाजिर हुई हूँ। सो सबसे पहले बात करते हैं हमारी फर्स्ट होममेड रेमेडी की। सो इस रेमेडी के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमें दरकार वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको ज़रूरत है 2 चम्मच बेसन, साथ ही साथ 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और 2 to 3 drops रोज वाटर। एंड लास्टली हमें चाहिए थोड़ा सा रॉ मिल्क। सो ये कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर घर में हर किचन में ऑलरेडी मौजूद होती हैं। बट फिर भी अगर आपके किचन में इनमें से कोई भी चीज़ अभी फिलहाल के लिए मौजूद नहीं है तो ये आपको किसी भी सुपरमार्केट से इजीली मिल जाएगी। अब जरा बात कर लेते हैं इसको बनाने की और साथ ही साथ कि किस तरह से आपने इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। सो सबसे पहले आपने 2 चम्मच बेसन, साथ ही साथ 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 2 to 3 drops रोज वाटर और थोड़ा सा रॉ मिल्क, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को कर लेना है अच्छे से मिक्स और कुछ इस तरह से मिक्स करना है कि कंसिस्टेंसी ना तो ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा थिन, यानी कि एक प्रॉपर इक्वल बैलेंस बन जाए। सो जैसे ही आपको एक परफेक्ट बैलेंस मिक्सचर मिल जाए तो बस आपने इसे अप्लाई कर देना है अपने फेस पे। 15 से लेकर 20 मिनट्स तक इसे चेहरे पर लगे रहने दें और फिर उसके बाद आप सर्कुलर मोशन में इसे अपने चेहरे से रिमूव कर लें। याद रखिएगा कि आपने वाटर से रिमूव नहीं करना बल्कि सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसे उतारना है। इससे एक बेनिफिट तो ये होगा कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाएगी, लेकिन द सेकेंड बेस्ट थिंग इज कि जब आप सर्कुलर मोशन करेंगे तो उससे आपकी जितनी भी रेड स्किन होगी वो भी निकल जाएगी और हो मोस्टली आपके फेशियल हेयर्स भी रिमूव हो जाएंगे। सो आपने किस तरह से इस रेमेडी को अप्लाई करना है, सो आपने इस रेमेडी को वीक में 2 to 3 times इस्तेमाल करना है। वेल मेरा सजेशन तो यही है कि जैसे कि मंडे से लेके फ्राइडे तक, आई नो बहुत सारी हमारी डिवाज जो कि वर्किंग वुमेन हैं तो ऑफिस जाती हैं, फिर ऑफिस से आकर घर पे उन्हें बहुत सारे काम काज करने होते हैं। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप फ्राइडे सैटरडे संडे इस रेमेडी को अप्लाई करें, क्योंकि वीकेंड पे एक तो आप घर होते हैं, दूसरा बहुत सारा टाइम भी होता है और इसमें आप खुद को वक्त दे सकती हैं। सो लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेमेडी को और रेमेडी को ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि क्या आपके लिए ये इफेक्टिव रही या नहीं। और जितने भी हमारी डिवाइस हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो

जितनी भी इंडियन लिसनरशिप है उनके पास ये अवेलेबल हो, सो आप तो घर से ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बनाने का तरीका क्या है और इस्तेमाल का तरीका क्या है वो भी आपसे शेयर करते हैं। सो आपने 2 चम्मच योगर्ट को 2 चम्मच लाल चंदन पाउडर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे अपने चेहरे पर लगा देना है और 2 से लेकर 3 मिनट तक हल्के हाथों से स्क्रब कर लेना है। और फिर उसके बाद आप किसी भी नीम गर्म पानी से अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं और आप फील करेंगे कि जैसे ही आप फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं आपको एक बहुत ही स्मूथ और अच्छा टेक्सचर दिखने को मिलेगा। सो बेसिकली दही में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है जो कि डेड स्किन सेल्स को निकालता है, साथ ही साथ जो लाल चंदन पाउडर है वो जलन और रेडनेस को खत्म करता है। सो अगर आप इन दोनों में से किसी भी प्रॉब्लम का है शिकार, आई नो आजकल गर्मी किस कदर ज्यादा हो चुकी है तो सूरज की अल्ट्रावायलेंट रेज की वजह से भी बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि स्किन बहुत टैन हो चुकी है या फिर ऐसे जली जली फील होती है। सो अगर आप इन तमाम तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं सो दिस रेमेडी इज फॉर यू। सो लिसनर्स लास्ट में ट्राई कीजिएगा इस मजेदार सी रेमेडी को और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि इसके आफ्टर और बिफोर रिजल्ट्स आपको कैसे लगे। वेल, और भी बहुत सारी ऑर्गेनिक रेमेडीज हैं मेरे पास मौजूद, लेकिन फिलहाल के लिए हमें आई है एक बहुत ही अच्छी सी सॉन्ग रिकमेंडेशन। सो जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने तमाम तरह लिसनर्स का ख्याल रखते हैं और उनकी बताई हुई सॉन्ग रिकमेंडेशन को प्रोग्राम की जीनत जरूर बनाते हैं। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक और ट्रैक के उस पर हम फिर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे।

वेलकम अगेन टू लिसनर्स. आइए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली ब्यूटी रेमेडी. सो ये ब्यूटी रेमेडी पहली जो दो ब्यूटी रेमेडीज हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी मुनफरिद है, बट इसके भी आपको आफ्टर रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे. सो सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर देती हूँ इसके तमाम तर इन्ग्रीडियंट्स और आप जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिए. सो इस रेमेडी के लिए आपको ज़रूरत है ज़ाफ़रान की. सो आप ज़ाफ़रान के कुछ रेशे ले सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम आप एक चम्मच इस्तेमाल कर लें. साथ ही साथ आपको ज़रूरत है एक चम्मच गर्म पानी की. सो अब आपने करना कुछ यूं है कि आपने ज़ाफ़रान को गर्म पानी में भिगो के रख देना है. फिर उसके बाद आपने इस पानी को हनी के साथ या फिर रॉ मिल्क, इन दोनों में से किसी भी एक चीज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. सो ये तो हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स प्लस कि किस तरह से हमने इस रेमेडी को रेडी करना है. सो अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपने इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है. सो आपने इसे वीक में 2-3 times स्किन पर 10 से 15 मिनट के लिए लगा के रखना है. फिर किसी भी ठंडे पानी से आपने वॉश कर लेना है फेस. सो बेसिकली ये रेमेडी वर्क करती है उन सभी लोगों के लिए जिनको डार्क स्पॉट्स का इशू रहता है या फिर आपके डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हो चुके हैं. आई नो कुछ लोगों के जेनेटिक्स भी होते हैं, बट कुछ लोग जब बहुत सारा स्क्रीन टाइम अपना ज्यादा कर लेते हैं तो उससे भी डार्क सर्कल्स का इशू हो जाता है. सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डार्क सर्कल्स को फिक्स करें, साथ ही साथ आप अपनी अनइवन टोन स्किन से भी निजात हासिल कर लें, सो आपके लिए ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा बेस्ट और इफेक्टिव रहेगी. सो आपने इसे वीक में 2-3 मरतबा इस्तेमाल करना है एंड देन आपने मुझे इसके आफ्टर और बिफोर रिजल्ट्स दोनों बताने हैं. सो द लिसनर्स, ये था हमारा आज का ब्यूटी रेमेडी सेगमेंट. आई होप आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा और अगर आपकी इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो या आप चाहते हो कि मैं स्किन केयर से रिलेटेड किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपसे कोई भी अच्छी सी रेमेडी शेयर करूं, सो उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं किस तरह से बताना है. उसका भी तरीका मैं आपसे शेयर कर देती हूँ. 0115710091. बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा हमारा नंबर है. सो जल्दी से आप इस नंबर पर जाके हमसे अपनी हर तरह की क्यूरी शेयर कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उस क्यूरी को दूर करें. वैसे अगर कोई इंग्रेडिएंट आपसे मिस हो चुका हो या फिर आपको किसी भी रेमेडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, सो डू लेट मी नो. साथ ही साथ एक बार फिर से आप सभी से शेयर करती चलती हूँ कि www.radiofaza.com.uk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है. ये वेबसाइट ना सिर्फ एक जरिया है जिसके थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं, बल्कि ये एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं. तो अगर आपको भी रेडियो फजा 97.1 FM से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप बनना चाहते हैं इस फैमिली का हिस्सा, सो उसके लिए बस आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा. हर तरह की मालूमात आपको यहाँ मिल जाएगी. सो वेल लिसनर्स, फिलहाल के लिए अभी प्रोग्राम यानी कि डीवर डायलॉग में वक्त हुआ है अगले सेगमेंट की जाने बढ़ने का, जो कि है हमारा मजेदार सा द स्पाइस किचन, जहां हर दिन हम लेकर आते हैं कोई एक न्यू इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रेसिपी. सो आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी पसंदीदा रेसिपी को हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, तो उसके लिए आप हमें बता सकते हैं थ्रू दिस नंबर. सो मैं सोच रही हूँ कि अगर अभी मैंने रेसिपी स्टार्ट कर दी तो चूंकि बीच में कमर्शियल ब्रेक आ जाएगा तो उस तरह से मज़ा नहीं आएगा. सो इसलिए हम इसको कमर्शियल ब्रेक के उस पर ही कंटिन्यू करते हैं. तब तक के लिए आप मुझसे अपने दिल का हाल शेयर कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ऑफिस में काम करते करते आपका दिल काम में लग रहा है या फिर आपका दिल कर रहा है कि किसी तरह यहाँ से ब्रेक लेकर घर जाया जाए. सो द लिसनर्स, प्रोग्राम में वक्त हो चुका है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब और आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पर. तब तक के लिए हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहे और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे. सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. सो स्टे ट्यून विद अस.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुशामदीद। रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपकी होस्ट आरजी ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कंफर्ट शो द डीवा डायलॉग। कैन यू इमेजिन, आपको और मुझे साथ में हो चुका है तकरीबन एक घंटा से भी ज्यादा और ये कुछ इसी तरह से है कि जब गुफ्तगू बहुत ही ज्यादा अच्छी बा असर हो रही होती है तो इंसान को वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता और वक्त किस कदर तेजी से गुजरता चला जाता है। सो कुछ इसी तरह से हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी बहुत तेजी से गुजर रहा है और अभी वक्त हो चुका है प्रोग्राम में उस सेगमेंट की जाने बढ़ने का जो कि मेरा आपका बल्कि हम सभी का फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि जहां बात हो खाने की वहां एशियन फैमिलीज एशियन लोगों की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। और हमारी लिसनरशिप की मोस्टली कम्युनिटी चूंकि एशियन फैमिली से बिलोंग करती है सो आई नो खाना आप सभी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो वेलकम टू ऑल द फूडीज लिसनिंग आउट देयर, एक बार फिर से तमाम दर सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का द स्पाइस किचन और हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार सी अच्छी सी रेसिपी, ऐसी रेसिपी जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होगी लेकिन हम बनाएंगे उसे घर पर विद सिंपल इंग्रेडिएंट्स।

सो जी, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, हमारी डीवास हैं और महिला मित्रा, सो अगर आप कोई भी काम कर रही हैं तो कर दीजिए थोड़ी देर के लिए उसे स्किप, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आज का मेन कोर्स। तो जल्दी से अपनी कॉपी, डायरी, नोटबुक रेडी कर लीजिए ताकि मैं आपसे शेयर करूँ आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सो जितनी देर में आप अपनी नोटबुक रेडी करती हैं उतनी देर तक हम अपनी इस रेसिपी को ज़रा सीक्रेट ही रहने देते हैं। सो जब तक आप अपनी नोटबुक रेडी करती हैं तब तक के लिए यह खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक जो कि मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा है इसे हम सुन लेते हैं। सो आइए मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और ट्रैक के उस पार इस रेसिपी को करते हैं स्टार्ट।

चलिए दी लिसनर्स, आइए नोट कर लीजिए इंग्रेडिएंट्स। सो सबसे पहले हमें चाहिए 1 kg बोनलेस चिकन क्यूब्स, और हम आज बनाने जा रहे हैं क्रीमी चिकन अचारी हांडी। सो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है 1 kg बोनलेस चिकन क्यूब्स, साथ ही साथ हमें चाहिए 1 cup दही, 1 packet फ्रेश क्रीम, 2 अदद टमाटर की प्यूरी और 1 chop की हुई प्याज। और हाँ, अचारी जायके के लिए हम बनाएंगे एक बहुत ही मजेदार सा स्पेशल सा मसाला, जिसे हम खुद घर पर रेडी करेंगे। सो किस तरह से आपने इस मसाले को रेडी करना है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 1 चम्मच कलौंजी, साथ ही साथ 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबित धनिया और 1 चम्मच मेथी दाना। इन सब को पीस कर इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक मिला लेंगे। और हाँ, 8 से 10 बड़ी वाली हरी मिर्चें जरूर इसमें शामिल करेंगे। सो तैयार हो गया हमारा ये मजेदार सा स्पेशल मसाला, जो कि आपकी इस अचारी हांडी को रेस्टोरेंट स्टाइल टच देगा, साथ ही साथ तमाम तर स्पाइसेस को बिल्कुल बैलेंस आउट रखेगा। सो दी लिसनर्स, ये थे हमारे बेसिक से इंग्रेडिएंट्स प्लस स्पाइसेस। आई होप आप सभी ने इंग्रेडिएंट्स तो कर लिए होंगे नोट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कुकिंग की जानिब। सो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। तो जो हमने अचारी मसाला पीस कर रखा था उसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस मिला देंगे। अब हरी मिर्चों में लंबा कटा हुआ धनिया भी थोड़ा सा शामिल कर देंगे, और इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छा फ्यूजन बन जाएगा और साथ ही साथ फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आएगी। सो स्टेप नंबर 2 में अब हम प्रॉपरली अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सो आप कोई सभी बर्तन ले लें, अगर आपके पास हांडी हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप कोई भी पैन ले सकते हैं, उसमें आपने कुकिंग ऑयल या फिर बटर इसको कर लेना है अच्छे से गर्म। सो जैसे ही आपका कुकिंग ऑयल हो जाए गर्म, इसमें आप प्याज शामिल कर दीजिए और इसे तब तक पकाएं जब तक आपका प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए। फिर बारी आती है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने की और साथ ही साथ बोनलेस चिकन की। सो इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दीजिए इसमें और इसे तब तक भूनें जब तक आपके चिकन का रंग बिल्कुल तब्दील ना हो जाए। सो जैसे ही आपके चिकन का रंग बदल जाए और आपको लगने लगे कि अब चिकन हो चुका है सफेद, सो बारी आती है हमारे अगले स्टेप की। सो अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर की प्यूरी और बचा हुआ अचारी मसाला। 3 से 4 मिनट इसे पकने देंगे। पकने के बाद आंच हल्की करेंगे और दही शामिल करते हुए इसे तब तक भूनेंगे जब तक ऑयल बिल्कुल ऊपर ना आ जाए। सो दी लिसनर्स, अब आता है असल ट्विस्ट। सो जो मसाला हमने हरी मिर्चों के अंदर शामिल किया था उन्हें चिकन के ऊपर सजा देंगे। 1 cup गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे और ढक्कन को बंद करके रख देंगे। अब हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि हम इसे 4 से 5 मिनट दम पर छोड़ दें ताकि अच्छी तरह से चिकन गल जाए और तमाम तरह के जो फ्लेवर्स हैं वो चिकन में ऐड हो जाएं। और हमारा चिकन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बने। सो अब फाइनली ढक्कन उठाएंगे, खुशबू का एक धमाका हर तरफ हो जाएगा। अब इसमें शामिल करेंगे 1 packet फ्रेश क्रीम, हल्का सा मिक्स करेंगे हरा धनिया, इसके ऊपर गार्निश करेंगे और तैयार है आपकी मजेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल अचारी चिकन हांडी। सो वेल लिसनर्स, इतने जल्दी झटपट से हमारी ये रेसिपी हो गई तैयार। कैन यू इमेजिन के जस्ट फ्यू स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप एक रेस्टोरेंट स्टाइल अचारी हांडी तैयार कर सकते हैं। अब आप इसे गर्मा गर्म नोश फरमाएं, या आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे हमीरी रोटी के साथ, नान के साथ या फिर चावल के साथ नोश फरमाते हैं। वेल, तीनों ही तरह इनका जायका बहुत मजेदार लगेगा और फ्यूजन भी बहुत टेस्टी लगेगा। सो द लिसनर्स, ये था हमारा आज का मेन कोर्स। मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये मजेदार सी हांडी, और साथ ही साथ
ये भी बताइए कि आपको कोई भी किसी भी किस्म की कोई क्यूरी तो नहीं है आज की रेसिपी को लेकर. सो आप मुझे बता सकते हैं 01157100971 इस नंबर पर जाके. सो ये थी हमारी मजेदार सी द स्पाइस किचन की रेसिपी. आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी. वेल इस तरह की मजीद मजे मजे की रेसिपीज के लिए आप हमें बता सकते हैं. अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक रेसिपी चाहिए हो लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को. आज ही ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बनी. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना फीडबैक हमसे शेयर करते हैं, हमें साथ ही साथ आगाह करते रहते हैं कि आपको किस तरह की रेसिपीज पसंद हैं और आपने ये रेसिपी ट्राई की और आपकी फैमिली का क्या फीडबैक था. इसके अलावा आप प्रोग्राम के डिफरेंट पहलू से भी रिलेटेड हमें फीडबैक दे सकते हैं. इससे हमें मदद मिलती है कि हम अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव करें और इसको बनाएं बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से हमारे लिसनर्स सुनना चाहते हैं. वेल लिसनर्स, आज के स्पाइस किचन में एक अदद और भी रेसिपी मौजूद है आप सभी के लिए, लेकिन वो मैं आपसे शेयर करूंगी कमर्शियल ब्रेक की, सॉरी इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार. तो तब तक के लिए हम ये अच्छा सा प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं. ट्रैक के उस पार हम जरा मीठे की बात करेंगे.

तो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्रीमी स्वीट रेसिपी। सो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स दरकार है मैं जल्दी से आपसे शेयर कर दीजिए और आप भी जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिए। सो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले दूध 1 kg, साथ ही साथ वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 tablespoons, चीनी 3 to 4 tablespoons, फ्रेश क्रीम 1 pack। अब बात करते हैं रंगीन सेवैयां, यानी कि ये तो बहुत ही कॉमन है हम एशियन फैमिलीज में, क्योंकि बचपन में हम बहुत ही ज्यादा खाया करते थे। सो आपने ले लेनी है 1 cup, साथ ही साथ आपको चाहिए फ्रूट कॉकटेल 1 छोटा कप, और जेली 1 packet। सो ये थे बेसिक से कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारी आज की मजेदार सी इस रेसिपी के लिए, और हम बनाने जा रहे हैं लब्बे शीरी। आई होप आप सभी ने इंग्रेडिएंट्स कर लिए होंगे नोट। अब जरा आगे बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब। सो सबसे पहले हम 1 kg दूध को और उसमें चीनी कस्टर्ड पाउडर तीनों चीजों को मिलाकर अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक हल्का गाढ़ा ना हो जाए। फिर इसे चूल्हे से उतार कर बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। सो अब हम इस ठंडे कस्टर्ड में शामिल करेंगे 1 fresh pack ऑफ क्रीम और अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए। सो जैसे ही बिल्कुल थिक स्मूथ टेक्सचर रेडी हो जाएगा, सो अब हम इसमें उबली हुई रंगीन सेवैयां, फ्रूट कॉकटेल और चैली के क्यूब्स, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हल्का हल्का मिक्स करते हुए शामिल कर देंगे। सो टाडा, आपकी मजेदार सी रेसिपी हो जाएगी तैयार जस्ट अ फ्यू स्टेप्स। सो अब हम इसे बाउल में निकाल कर ऊपर से इसे बादाम, पिस्ता या फिर काजू की मदद से गार्निश कर देंगे और आपकी मजेदार सी लब्बे शीरी हो गई तैयार, और वो भी इतने जल्दी इतनी आसानी से। एंड ट्रस्ट में ये बहुत ही ज्यादा यमी और डिलिशियस बनी है। सो लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को भी, क्योंकि जब हम कुछ भी तीखा चटपटा खाते हैं तो दिल करता है कि आप कुछ मीठा हो जाए। सो खाने को मुकम्मल करता है हमारा ये मीठा ही। सो मीठा भी ऐसा जो कि बहुत ही ज्यादा डिलिशियस हो, प्लस डिफरेंट तरह के फ्लेवर से बना हो। सो ये थी हमारी आज की द स्पाइस किचन की मजेदार सी दोनों रेसिपीज। आई होप आपको दोनों रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। वेल, अगर फिर भी है आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर रेसिपी को लेकर किसी भी तरह की क्यूरी, सो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और मैं आपकी क्यूरी को पूरी करने की भरपूर कोशिश करूंगी। सो लिसनर्स, लाजमी ट्राई कीजिएगा इन रेसिपीज को, और ट्राई करने के बाद मुझसे अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा और बताइएगा कि आपको तीखी रेसिपी ज्यादा अच्छी लगी या फिर हमारी मीठी रेसिपी। लेकिन एक प्रो टिप मैं आप सभी से शेयर कर देती हूँ कि इस डेजर्ट को बनाने के बाद आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिएगा, क्योंकि इससे ये होगा कि ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और हमेशा मीठा ठंडा ही अच्छा लगता है। सो जब आप इसको ठंडा करके खाएंगे तो ये बहुत अच्छा टेस्ट करेगा और बिल्कुल केक के जैसा दिखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये रेसिपी मजीद थोड़ी सी अच्छी और बन जाए, तो इसके लिए आप इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि ये रेसिपी मजीद डिलिशियस लगे तो आप इसमें फ्रूट केक्स भी ऐड कर सकते हैं, वो इसके टेस्ट को मजीद इन्हेंस कर देगा। लिसनर्स, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है और प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि आपका दिन, आपकी सुबह अभी बाकी है। सो आपने क्या करना है, आपने करना यह है कि इस दिन को मजीद खूबसूरत प्रोडक्टिव बनाना है, और हर वक्त इसी जस्तजू में रहा करें कि किस तरह से आप अपने आने वाले वक्त को खूबसूरत बना सकते हैं, कुछ मीनिंगफुल कर सकते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर कहने को तो बात करें तो टाइम बहुत जल्दी से गुजर जाता है, लेकिन अगर आप इस वक्त को खूबसूरत, मेमोरेबल या फिर प्रोडक्टिव बनाएंगे तो ये आपके आने वाली जिंदगी में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेगा और आपके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर आएगा।
सो जाते जाते एक बार फिर से आज के मोटिवेशनल कोट्स आप सभी से शेयर कर देती हूँ। सो आज का हमारा फर्स्ट कोट ये कहता है कि दुनिया एक न्यू मंथ एक न्यू स्टार्टअप होता है, यानी कि अगर आपसे पास्ट में कोई भी गलती मिस्टेक हो चुकी है और आप उस पर शर्मिंदा हैं तो शर्मिंदा होना छोड़ दीजिए, बल्कि ये सोचिए कि अगर ये गलती आपसे ना होती तो आप आज इस मुकाम पर ना खड़े होते। और हमारा आज का जो सेकेंड कोट है वो हमें ये सबक देता है कि बिगिनिंग कोई भी काम की शुरुआत ही सबसे मुश्किल और कठिन मरहला होता है। जब आप किसी नए काम का आगाज कर लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुद ब खुद बैलेंस आउट होती चली जाती हैं और रास्ते खुद ब खुद हमवार होते चले जाते हैं। लेकिन जब आप किसी भी नए कदम की तरफ जाते हैं तो शुरू में आपको बहुत मुश्किल लगता है और आप सुस्ती और काहली में मुब्तला रहते हैं, लेकिन आपने सुस्ती में नहीं रहना और उस कदम को जल्दी उठाना है। इसी के साथ ही मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दी इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और बहुत सारी एंडलेस गॉसिप्स के साथ। तब तक आपने अपना बहुत ज़रा ख्याल रखना है, साथ ही साथ अपने लव्ड वंस का भी, यानी कि ऐसे लोगों का जिनकी जिंदगी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते मैं आप सभी के लिए एक अदद प्यारा सा ट्रैक प्ले करती चलती हूँ ताकि आप इसको सुनते सुनते मुझे अलविदा करें।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

सवाल मिलकर ओपन करते हैं इस खूबसूरत लंच बॉक्स को, जिसमें ना सिर्फ खाना होता है बल्कि बहुत सी ऐसी बातें छुपी होती हैं जो आपने हम तक पहुंचानी होती हैं। नंबर आपको नोट करवा चुकी हूँ, इस खूबसूरत नंबर को कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रही हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से। साथ ही में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk, आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है सवाल, वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करेंगे हम इन्फॉर्मेशन मीडिया और आपकी होगी कम्युनिकेशन और होगी मिलकर इंटरटेनमेंट। और जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी सेफ बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। और घर बैठी खवातीन जो हमें सुन रही है, बताइएगा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। शायद आप यही सोच रहे हो कि आज खाने में क्या बनाया जाए, तो अगर कोई रेसिपी प्रोग्राम में शामिल अपनी करवाना चाहें जो चाहें कि मैं आगे लिस्टनर तक उनको शेयर करूं, तो मैं वो भी कर दूंगी। या फिर आप मेरे तरीके से कोई रेसिपी कोई खाना बनाना चाहते हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं ज़रूर उसको प्रोग्राम में शामिल करूँगी। लंच बॉक्स में सिर्फ हम खाना खाने नहीं आते बल्कि रेसिपीज भी शामिल कर सकते हैं। जो है प्रोग्राम का आगाज़ मैं हमेशा की तरह जो है वो ट्रैक के साथ ही करती हूँ, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ भी जो है वो एक अच्छे से टॉपिक के साथ किया जाता है। हमेशा की तरह एक टॉपिक डिसाइड किया जाता है, उसके हवाले से फिर डिस्कस आपके साथ की जाती है, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर बात मुझे ही पता हो, कभी कुछ बातें मुझे नहीं मालूम होती और कभी कुछ बातें आपको नहीं मालूम होती जो मैं आपको बता देती हूँ, जो बातें आप मुझको बता देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कहीं से भी कोई समझाने वाला बंदा मिल रहा है, मतलब आपको बातें समझाई जा रही हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो आपको नहीं पता, तो आप उसको फ़ौरन से इकट्ठा कर लें। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप किसी महफिल में बैठे होते हैं तो आपको उन चीज़ों की ज़रूरत, उन बातों की ज़रूरत पड़ जाती है, और फिर आपसे कोई पूछे कि आपको ये बात किसने बताई, तो फिर बेगानी महफिल में बैठ के एक इंसान का जिक्र, और ये तो बड़ी फ़ख्र की बात होती है। प्रोग्राम में मैसेजेस भी शामिल करेंगे और साथ में जो है वो मेरे पास जो है वो मैसेज रिसीव होते हैं, उसके हवाले से फिर मेरे साथ बातें भी शेयर की जाती हैं, फिर उस तरह से मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। लेकिन कोई पैगाम किसी प्यारे के नाम करवाना चाहें तो मुझे लाजमी बताइएगा, या फिर कोई नसीहत किसी को देना चाहें उनको जिनको आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके आगे बोला नहीं जाता। वो कहते हैं ना, सियाने कहते हैं कि जब आप की किसी ऐसे इंसान के साथ बहस हो जाए जो आपको अजीज़ हो, जो आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, तो आप उससे जो है ना बहस में हार जाएं, क्योंकि जब आप बहस में जीत जाएंगे ना तो आप इंसान को खो देंगे। और फिर वही बात आ गई कि अगर आपको कोई बात बुरी लग भी गई है ना, तो आपने करना यह है कि अगर आपको इंसान ज़रूरी है तो आपको बात को भूलना पड़ेगा, अगर आपको बात ज़रूरी है तो फिर आपको डेफिनेटली इंसान को ही भूलना पड़ेगा। सवाल ऊपर वाले एक बड़े खूबसूरत सा वोकल बॉक्स हमें दिया होता है, तो जी मैं आपका जिक्र ही कर रही हूँ। तो आप ऐसा करें कि अगर आप अपनी आवाज़ का जादू इस आवाज़ की दुनिया में जगाना चाहते हैं तो आप हमारी मार्केटिंग टीम से रابطہ कर सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ कॉल के थ्रू प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं। नंबर मैं आपको अगेन नोट करवाए देती हूँ, जिन नए लोगों ने आज रबी फजा 97.1 FM को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम नई समातों का। नंबर नोट कीजिएगा अगेन 01157100971। एक तो हमारे साथ भूखे ही बैठे रहते हैं, मैंने जब भी मतलब आप एक तो आप पहले ही भूखे और ऊपर से आपको यार भी भूखे मिल जाएंगे, वो हिसाब हो जाता है। वो मैं कल एक रील देख रही थी, उसमें बताया था कि जो बच्चे बचपन में ये पढ़ते थे ना, हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, तो वो बच्चे आज भी गरीब ही हैं। सवाल साथ ही में जो है वो दिन का आगाज करेंगे खूबसूरत से ट्रैक के साथ। दिन का जो आज के दिन की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ शेयर करूँगी, उम्मीद करूँगी कि आपको वो पसंद आएगी, लेकिन अगर कोई टॉपिक आप शामिल करवाना चाहें तो करवाइएगा। मौसम बड़ा ही सुहाना है और इस सुहाने मौसम में जो है वो कोशिश ये करेंगे कि छलकते पड़कते ट्रैक शामिल करें, सैड ट्रैक की तरफ नहीं बढ़ेंगे। अगर फरमाइश आ गई तो फिर प्ले करना पड़ जाएगा, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा प्रोग्राम में शामिल होकर ऐसे ट्रैक शामिल करवाइएगा जो पहले कभी भी मेरे प्रोग्राम में प्ले ना हुए हों।
मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैं प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ तो एक ट्रैक के साथ करती हूँ, फिर मैं उसके शुरू में जो ट्रैक शामिल करती हूँ ना, तो फिर मुझे बाकी फरमाइशें भी उसी तरह की आती हैं। तो अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं प्रोग्राम में कैसे ट्रैक शामिल करूँ। तो पहला ट्रैक अगर मैंने कोई झलकता फड़कता कर दिया तो फिर फरमाइशें भी उसी तरह की ही आएंगी। सो अभी हम वो झलकता फड़कता ट्रैक ढूंढ लेते हैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो, क्योंकि मुझे ट्रैक ढूंढने में बड़ा मसला होता है। सो आप थोड़ा सा बीजीएम को एंजॉय कीजिएगा, मैं एक छोटा सा ट्रैक जाना वो पकड़ के लाती हूँ।

0: लीजिए, मैंने सोचा कि क्यों ना आपका स्वागत किया जाए थोड़ा अच्छे से, आपका वेलकम थोड़ा और अच्छे से किया जाए। हाँ अगर, लेकिन अगर कोई ट्रैक किसी को डेडिकेट करना चाहे तो मुझे लाजमी बताइएगा, बेशक वो सैड ही क्यों ना हो। सो वेल, आइए चलते हैं ट्रैक की जाने में, इस ट्रैक के उस पर है कि आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून फॉर जेनिथ 7.1 एफएम एंड ऐप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।
1: Love is the message, eh? You ready? Let's go. Yeah.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनती हुई समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। और मैंने सोचा कि क्यों ना बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। इन्फॉर्मेशन शेयर करने का तो अभी बहुत सा टाइम है आपके दरमियान बाकी है, लेकिन जो फरमाइश पहुंच रही है ना भाई, उनको मेरा पूरा करना सबसे पहले काम होता है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको जो है वो आज के दिन के हवाले से कुछ अच्छी बात भी पहुँचा दो अपनी तरफ से भी, और जो मैसेज मुझ तक रिसीव होते हैं वो अभी मैं प्रोग्राम में शामिल कर देती हूँ। लेकिन अभी जो है ना मेरे पास एक बड़ी खूबसूरत फरमाइश मौजूद है और मैं इसको पूरा करूँगी, क्योंकि ये ट्रैक मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हो साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा, ट्यून करके रखिएगा फजल 97.1 FM को एंड डैप।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को। रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च। आवाज आप सुन रहे हैं सलोरा।

Kowalski. सोल जी के साथ साथ प्रोग्राम एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था, रोकी एंड रानी की प्रेम कहानी मूवी से लिया गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। एक छोटी सी फरमाइश थी और मुझे भी ये ट्रैक बहुत पसंद था। फिर वो मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं कोई ट्रैक प्ले करती हूँ ना तो मेरे लिसनर की भी फरमाइश मेरी तरह की चॉइस है, वो फरमाइशें भी उसी तरह की ही आती हैं। सोल अभी प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं जी, चांदनी जी मेरी जो है वो बड़ी खूबसूरत सी लिसनर है और हमेशा की तरह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सलू राजा? आप शो बहुत मज़े का चल रहा है, आपकी आवाज़ तो दिन का आगाज़ करवा देती है जी। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। चेक की फरमाइश कर ली है इन्होंने और साथ ही में एक छोटा सा खूबसूरत सा मैसेज प्रोग्राम में शामिल करवाया भैया आज के दिन के हवाले से।

मैसेज कुछ यह है कि चांद की तरफ प्रवास करो, अगर तुम चांद तक ना पहुंच सके तो सितारों को तो जरूर छू लोगे। ये बात बिल्कुल अच्छी है। और जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको बहुत सी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है और बहुत सी चीजों को फेस करना पड़ता है। हाँ, अगर आप चांद तक ना पहुंच सके तो सितारों को तो जरूर छू लेंगे, मतलब अगर आप अपनी कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा मुकाम हासिल करना चाहते हैं जो आपने बचपन से सोचा हो, आपका ख्वाब हो कि इस चीज़ को आपने अपने लिए अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, तो उसके लिए आपको उड़ना तो पड़ेगा, यानी कि थोड़ी सी ऊंची उड़ान उड़नी पड़ेगी, लेकिन अपनी हद में रह के। वो कहते हैं ना कि आप अपनी हद में रह के काम करते हैं ना तो वो काम बहुत अच्छे से होता है। घमंड जो है ना वो इंसान का बेड़ा गर्क कर देता, उसको कहीं का नहीं छोड़ता। बहुत अच्छी बात जी आपने प्रोग्राम में शामिल करवाई है, और साथ ही में एक और छोटा सा प्रोग्राम भी शामिल करवा दिया है कि सख्त मेहनत के बगैर कामयाबी का ख्वाब देखना ऐसा है जैसे बिना फसल लगाए फसल काटने की तवक्को रखना। इसी बात से मुझे एक बात याद आ गई कि मुझे किसी ने पूछा गया था कि लोग किसी के दिल में वो बीज क्यों बो देते हैं कि जब जो लोग उनको पानी नहीं दे सकते तो फिर भी उनको क्यों बोते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, ऐसा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में आ रहे हैं, किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है, तब दोस्ती का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप किसी की ज़िंदगी में किसी के दिल में वो बीज तभी लगाएं जब आप उसको बो सकते हैं, जब आप उसकी केयर कर सकते हैं।

वाले इस बात को वापसी पे आकर कंटिन्यू करते हैं, अब एक छोटी सी फरमाइश उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर इसके इस बार रहेगी आपसे मुलाकात। दरअसल मैं इसको शामिल तो कर सकती हूँ लेकिन अभी जो है ना वो एक ट्रैक की फरमाइश मौजूद है और साथ ही में फिर कमर्शियल ब्रेक का समय भी हुआ जाता है। अब वही बात आ गई कि जब आपसे मुझे गपशप करने का मजा आने लग जाता है तो प्रोग्राम में या तो टाइम खत्म हो जाता है या फिर वो कहते हैं ना कमर्शियल ब्रेक का वक्त आ जाता है। हाँ वाला, अगर आप मुझे मैसेज कर दें, जैसे ही आपका मैसेज मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर जगमगाएगा मैं फौरन से चुपके से उसको प्रोग्राम में शामिल कर दूंगी। लेकिन अभी तक इस ट्रैक को सुनिएगा, एक छोटी सी ब्रेक को भी इंजॉय कीजिएगा, फिर इसके उस पार रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड DAB विल बी बैक आफ्टर द ट्रैक।

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793 2।
4: आरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रासिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सरोराज की। और उसी के साथ साथ एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था खसारा, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यार समर जाफरी की आवाज़ सुनकर जो गाने का अजीब सा सुकून मिलने लग जाता है, मतलब इतनी सॉफ्ट आवाज़ किसी की मैंने सोचा नहीं था कि हो सकती है। तब धीमे लहजे में वो गाता है और कमाल का गाता है, आउट क्लास। सो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर एक अपनी पसंद का भी ट्रैक शामिल कर दिया जाए समर जाफरी की आवाज़ में और मुर्तजा की आवाज़ में। ये ट्रैक भी काफ़ी दिन पहले जो है, बल्कि अभी भी मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ट्रैक का नाम है हर बार, सो आइए सुनते हैं इस ट्रैक को। इस ट्रैक के उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड डैफ।

पर अगर आप भी अपनी फरमाइशों को पूरा करवाना चाहते हैं तो आप यूँ कर सकते हैं कि आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का लाइव व्हाट्सएप नंबर है 01157100971। इस खूबसूरत से नंबर कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद भी व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि पहले अपने दिल को थामना पड़ेगा, दुखी सुखी वाला माहौल नहीं बनना। मतलब कुछ ट्रैक ऐसे होते हैं जिनको सुनकर इंसान दुखी हो जाता है, लेकिन ये दुखी करने वाला नहीं है, ये एक किस्म का सॉफ्ट ट्रैक है और इसको सुनने के बाद एक अलग सा सुकून मिलता है। सो अभी मुझे सिंगर का नाम पूछा गया था, समर जाफरी का ट्रैक मैंने शामिल किया जी, तो साथ ही मैंने बताया था और साथ ही में जो है ना मेरे पास फरमाइश भी आ गई है एक अगले ट्रैक की समर जाफरी की आवाज़ में। अच्छा, इतने मजे के सॉफ्ट ट्रैक होते हैं कि मेरा दिल करता है कि अब इनको बीजीएम बना के यूज कर लो। अफसानों में भी कहानी ऐसी नहीं। सवाल प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी जो है अभी मेरे आपके दरमियान तकरीबन समय हुआ जाता है एक इसके साथ साथ एक कमर्शियल ब्रेक का भी। की बातों में लफ्ज खो दूं जाए नजरें सर, आइए चलते हैं ट्रैक की जानिब। घबराना नहीं है क्योंकि वो भी आवाज़ जो है ना वो समर जाफरी की है। ये ना बोलेंगे ये कौन सा ट्रैक प्ले कर दिया, तो मैंने समर जाफरी की आवाज़ में ट्रैक प्ले किया है, इसकी फरमाइश मुझ तक मौजूद थी। गुजारशी है ट्रैक का नाम है, बोले ये सुनते हैं इस ट्रैक को। इस ट्रैक को सुनिए, आपसे मुलाकात होगी, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक रहेगी मेरे आपके दरमियान। So stay tuned for Zen 7.1 FM and DAB.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स, नाचो आवाज आप सुन रहे हैं सोलो राज की। सोलो जी के साथ साथ अभी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक आ गई थी प्रोग्राम में, कमर्शियल ब्रेक के बारे में आपसे मुलाकात। सोलोजी के साथ साथ अभी मेरे पास एक बड़ी खूबसूरती फरमाइश मौजूद है, और वो फरमाइश थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको पूरा तो करेंगे ही। लेकिन उससे पहले जो है वो हम बात कर रहे थे वक्त के बारे में। दुनिया में बहुत सी चीज़ें दोबारा हासिल की जा सकती हैं, लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आता। सो इसीलिए कामयाब इंसान हमेशा वक्त की कदर करता है, और कामयाब इंसान नहीं बल्कि वो लोग भी जो, अब उनका जिक्र नहीं करूँगी, बट बात बहुत गहरी और डीप चली जाएगी, बट अब ये कह लेते हैं कि वक्त की पाबंदी का मतलब है कि हम अपने हर काम को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करें। जो लोग वक्त ज़ाया करते हैं वो अक्सर अहम काम मुकम्मल नहीं कर पाते। अहम काम बहुत से हो सकते हैं, घर बैठी हुई सोचती होंगी कोई साजिश ही होगी, हाँ कुछ ऐसा नहीं, साजिश वगैरह नहीं है, क्योंकि खवातीन के दिमाग में अक्सर यही बात आती है। इसके बरक्स वक्त के जो है पाबंद लोग अपनी जिम्मेदारियाँ बेहतर तरीके से पूरी करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। सो हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर पाते टाइम पे, और फिर उसके बाद हमें पछतावा होता है। सो वक्त हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया। वक्त एक बार गुजर जाए तो दोबारा वापस नहीं आता। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह से कैरी करना है। वक्त की पाबंदी हमें एक ज़िम्मेदार इंसान बना देती है, और वो कहते हैं ना घर का सबसे लाडला बेटा जो है ना वो इतना मेहनती हो जाता है तब तो उसको दुनिया की ठोकर लगती है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ठोकर शोकर कुछ भी नहीं होती, सबक मिलता है एक इंसान को, और उससे इंसान सीखता है ना कि वो बुरी चीज़ है, वो चीज़ आपको सिखाती है कि जो चीज़ आप पीछे करके आए वो अब आपने आगे आके नहीं करनी। सर अभी इसी के साथ साथ चलते हैं एक ट्रैक की जानिब, जो फरमाइश हमारे पास मौजूद है उसको पूरा कर देते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड डैप। साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा। मिलते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के उस पार।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदेद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से।
1: बरसों हो गए बिछड़े,
0: फिर ग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स, जहाँ जवाब आप सुन रहे हैं सतराज की।
1: फिर ऐसा क्यों लगता है जहाँ
0: सवाल उसी के साथ साथ अभी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हाल हो चुकी थी प्रोग्राम में। प्रोग्राम में इसके पा रही है आपसे मुलाकात
1: की भी तस्वीर,
0: लेकिन अभी समय हो जाता है मेरा आपके दरमियान हमारे सेगमेंट का। इट्स मीन के हमारा जो सेगमेंट होता है म्यूजिक का, उसको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मतलब आपकी फरमाइशों को पूरा किया जाता है। सो अभी मेरे पास एक फरमाइश मौजूद है, तो मेरे पास लेंथी लेंथी ट्रैक्स की फरमाइश भी आती है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनको अपने लास्ट सेगमेंट में ही पूरा करूँ। सवाल आइए शुरुआत कर लेते हैं सेगमेंट की कोक स्टूडियो सीजन 9 से। और सुनिए इस ट्रैक को, इस ट्रैक इस बारे की आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून फॉर 97.1 एफएम एंड डैप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समाचार को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आज आप सुन रहे हैं सरोज राज की। सरोज जी के साथ साथ इस छोटे से कलाम की फरमाइश आती थी, मैंने सोचा कि उन्हें इसको भी शामिल कर दिया जाए। और अभी उसी के साथ साथ एक और ट्रैक की फरमाइश मेरे पास मौजूद है, उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। फिर इसके पार जाएंगे आपसे इजाज़त, लेकिन अभी तक ट्यून करके रखिएगा फजल 97.1 एफएम को एंड डैप को, साथ दीजिएगा और हमेशा की तरह जो है वो अपनी मौजूदगी का एहसास मुझे दिलाते रहिएगा, क्योंकि अभी हम कहीं नहीं जा रहे, सिर्फ एक ट्रैक शामिल करेंगे, फिर इसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे और फिर चाहेंगे आपसे इजाज़त। अभी तक के लिए स्टे ट्यून रेडियो 97.1 एफएम एंड डैप।

तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। फिर ग्राम आप सुन रहे लंच बॉक्स सलाम जवाब आप सुन रहे सुरराज की। सो उसी के साथ साथ अब वक्त हुआ जाता है ख़त्म, अब आपको मुझे देनी होगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा।

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं राणा अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM नोटिंगम से इस वक्त लाइव। अभी आप सुन रहे थे ओरे पिया, राहत फतेह अली खान साहब जो है उनकी आवाज में, और इनका जो म्यूजिक था ये मेरे ख्याल से सलीम जो है उन्होंने बनाया। वैसे सलीम खुद भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे गायक हैं,

लेकिन उनके म्यूज़िक का क्या ही कहना जी, ये गाना जो है वो ऑल टाइम मेरा फेवरेट है और ये गाना इससे हमने स्टार्टअप किया। और अगर ये गाना आपको अच्छा नहीं लगा तो आप अपनी फरमाइशें भी हमसे पूरी करवा सकते हैं। फरमाइश पूरी करवाने के लिए, प्रोग्राम के अंदर शामिल होने के लिए आपने करना कुछ है कि आपने अपना मोबाइल फ़ोन उठा लेना है। इन केस अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल भी आप फरमाइश नहीं कर सकते।

फिर आपको गाड़ी कहीं रोकनी पड़ेगी और उसके बाद मोबाइल उठाना पड़ेगा और फिर आप डायल करना है कि 01157100971 हमारा रابطے का नंबर, और इस नंबर के थ्रू आप अपनी फरमाइश जो है वो हमारे सामने रख सकते हैं ताकि हम भी देख सकें भाई आपकी जो वो प्लेलिस्ट है वो किस तरह की है या आपका टेस्ट किस तरह का है म्यूजिक के हवाले से, आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं। और हमें आइडिया भी हो सकेगा कि आप कहीं दुखी आत्मा तो नहीं, और इस ट्रैक से जो है वो इंसान का वैसे कहते हैं कि आइडिया हो जाता है, आपकी प्लेलिस्ट जो होती है वो आपका बता रही होती है कि आप किस कैटेगरी के बंदे हैं, मतलब कि आपका ट्रैक कौन सा है या फिर आप जो है वो किस तरह के आदमी हैं, दुखी रहने वाले, खुश रहने वाले या फिर हल्ले गुले वाले। ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान के म्यूजिक से आइडिया जो है वो जजमेंट हो ही जाती है थोड़ी बहुत। बरल जी, बड़ा खूबसूरत सा एक ट्रैक है हमारी आंखों के सामने, इस गाने को हम प्ले करने जा रहे हैं, उडारियां, और सतेंद्र सरताज का ये गाना है, बड़ा खूबसूरत गाना और मोहब्बत वालों के लिए है ये। बेशक मेरी सारी बातें, मेरे सारे अल्फाज, मेरे सारे गाने मोहब्बत वालों के लिए ही हैं। ये गाना हर उस शख्स के लिए है जिसकी मोहब्बत कायम है या जिसकी मोहब्बत रूठ चुकी है या फिर जिसकी मोहब्बत टूट चुकी है। ये गाना बड़ा ही ज़बरदस्त है, बड़ा कमाल का है, इसके लिरिक्स जो हैं वो हर बंदे के लिए सूटेबल हैं, और आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को इस गाने के अंदर तलाश कीजिए, होपफुली आपको अपना अक्स नज़र आएगा। ये गाना बड़ा ज़बरदस्त है, इस गाने के उस पार एक आज का जो खूबसूरत सा हमारा टॉपिक है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें होने वाली हैं आप लोगों की और मेरी। आय हाय, क्या कमाल का म्यूज़िक है, देखें स्टार्ट इसका कहाँ से हुआ। तो फिर वॉल्यूम फुल कर दीजिए और इस गाने का मजा लीजिए, इस गाने के उस पार दोबारा से मुलाकात करते हैं आवाज की दुनिया में।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आफ्टरनून मिक्स में आपको खुशामदीद कहा जाता है और अभी आप सुन रहे हैं अरसलान अली की आवाज को। इस आवाज से पहले आप सुन रहे थे उडारियां, जो कि सतिंदर सरताज का गाना था। बड़ा खूबसूरत ट्रैक है और उसमें सिंगर कह रहा है कि जी गल मेरे वास दी नहीं रही, यानी कि अब बात उसके बस के बाहर हो चुकी है। ये ऐसा होता है जब मोहब्बत इंसान को हो जाती है और मोहब्बत नेक्स्ट लेवल की हो जाए तो फिर वो बात जो है इंसान के कंट्रोल से बाहर निकल ही जाती है। आपके साथ ये कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ और क्यों हुआ? आप मुझे बता सकते हैं और बताने के लिए आपने कुछ करना है यूं है कि आपने डायल करना है 01157100971 हमारा रابطے का नंबर। इस नंबर के थ्रू आप मुझसे फरमाइशें भी पूरी करवा सकते हैं, अपने पसंदीदा ट्रैक भी लगवा सकते हैं और उसके अलावा अपनी मोहब्बत की दास्तान भी बता सकते हैं ताकि मोहब्बत की दास्तान को कलम बंद कर लिया जाए हमेशा हमेशा के लिए और ये तारीख रकम कर दी जाए। अगर तो आपकी मोहब्बत खास और ऐसी स्टोरी हो ही रांझा वाली तो क्यों नहीं जी, उसके ऊपर किताबें भी छपेंगी, नावल भी बनेंगे और पूरी पूरी स्टोरी जो है वो लिखने स्टार्ट हो जाएगी। मैं भी कहां से कहां चला गया, उडारियों से हम कहां पे पहुंच गए हैं जी। लेकिन जी मोहब्बत की बात ही ऐसी है कि मोहब्बत की जब बात होती है तो फिर इंसान बात करता करता मोहब्बत के अंदर यू नो खो जाता है। बरल जी, आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर जो है वो बात आपके कंट्रोल में नहीं रहती? बहुत सारे लोग हैं जिनकी मोहब्बत के अंदर बात जो है उनके बस में नहीं रहती और बहुत सारे लोग हैं जिनकी गुस्से के अंदर बात जो है उनके बस में नहीं रहती। बरल जी, ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है आप बता सकते हैं? उसके अलावा जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो भी बड़ा सिंपल और सादा सा होगा, लेकिन जी अगर हम आज का जो टॉपिक है उसकी बात करें तो अगर वो चीज़ें जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो अगर उनको हम अपना लेंगे तो यकीन कीजिए कि ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं इंशाल्लाह। ये हम परेशानियों को दूर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक गाना जो है वो सुनेंगे, सोचा ना था। और ये गाना जो है बड़ा खूबसूरत गाना है, थोड़ा पुराना है लेकिन ये इसकी वाइब जो है आपने समझनी है, सुननी है। इसके लिरिक्स जो हैं वो बड़े खूबसूरत हैं और इसका म्यूज़िक भी बड़ा अच्छा है। इस गाने के उस पार दोबारा से मुलाकात होगी आवाज की दुनिया में। मुझे कहते हैं राना अरसलान अली, आपको क्या कहते हैं आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं इस गाने के उस पार।

ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਝੂਠਾ ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਵੇ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਖਫਾ ਨੀ। ਉੱਤੋਂ ਦਿਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੋੜੀ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਯਾਰ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲ ਕੋ ਛੂ ਲੈਣੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਨ ਲਾਈਨੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਡੀਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਤੇਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪ ਸਮਝੇਂ ਔਰ ਇਸ ਸੇ ਸੀਖੇਂ। ਆਪ ਮੁਝੇ ਬਤਾ ਵੀ ਸਕਤੇ ਜੀ, ਆਪਨੇ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਇਨ ਲਾਈਨੋ ਸੇ? ਅਗਰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾ ਤਬ ਵੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾ ਤਬ ਵੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾ ਤੋ ਹਮ ਸਿਖਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ। उसके अलावा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे थे, क्योंकि ये ट्रैक आ गया, ट्रैक के बाद की हमारी कमिटमेंट थी। तो डेफिनेटली जी, मैं अपनी ज़ुबान का जो है वो बड़ा पक्का आदमी हूँ, और ये हमेशा से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी ज़ुबान के कैसे हैं? वैसे कहते हैं जिस बंदे की मार्केट वैल्यू आपने देखनी है, उसकी कमिटमेंट चेक कर लें कि आप बंदा वो जो है वो कमिटमेंट के ऊपर कितना पूरा उतरता है। उस हिसाब से आप बंदे को चेक कर सकते हैं कि ये मार्केट इसकी किस तरह की होगी, मार्केट के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी। कोई शक नहीं जी, जो हम सोसाइटी के अंदर जहाँ पर रह रहे होते हैं, जो मुआशरा होता है, या जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपकी अपनी एक वैल्यू होती है। और वो वैल्यू किस तरह से काउंट की जाती है, डेफिनेटली आपके मत्थे पे तो आपका नहीं लिखा होगा कि इस बंदे की वैल्यू क्या है। इंसान की ज़ुबान जो होती है वो उसकी वैल्यू बता देती है। कहीं ना कहीं इंसान के अल्फाज जो हैं वो बता देते हैं इस शख्स की क्या वैल्यू है, बंदा कितने पायदा है। अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं तो मुझे बताइएगा, बताने के लिए आपने करना कुछ यूं है। वैसे तो मैं अपना नंबर पहले बता चुका हूं, अपना नंबर यानी के रेडियो फदा 97.1 FM जो नोटिंगम से लाइव आपके साथ है, उसका नंबर बता चुका हूं। लेकिन अगर आप लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी अटैच हुए हैं और अभी आपने हमें ट्यून किया है, तो आप हमारा नंबर जो है वो 0115710971 है, जहां पर आप अपनी फरमाइशें और उसके अलावा हमारी जो गुफ्तगू हो रही है, हमारी जो बातें हो रही हैं आप लोगों के साथ, उसके अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप हमें बता सकते हैं हमारी जो प्लेलिस्ट है वो किस तरह की है, या फिर आप हमें बता सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो मैंने अपने टॉपिक के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज़ कर दी हैं, बहुत सारे हिंट दे दिए हैं,

बिल्कुल जी, अभी आप सुन रहे थे तो झूम झूम झूम नसीबो लाल की आवाज में, और इस गाने के उस पार मुझे कमर्शियल ब्रेक भी नजर आ रहा है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, इस कमर्शियल ब्रेक के उस पार दोबारा से मुलाकात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा, उसके हवाले से मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं कुछ दोस्तों के, उनको भी शामिल करेंगे, कुछ फरमाइशें भी शामिल करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM नोटिंगम से लाइव।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं राना अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम नोटिंगम से इस वक्त लाइव आपकी स्मार्टों की नजर। जिन लोगों ने अभी अभी हमें ट्यून किया उनको बताता चलूं कि हमारा आफ्टरनून मिक्स में आज का जो टॉपिक है वो है जी, जिंदगी को जीने के लिए कौन से असूल जरूरी हैं, कौन से ऐसे असूल हैं जी, कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आप फॉलो करते हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जीने के लिए, ज़िंदगी को गुजारने के लिए। उसके अलावा जी, आज हम जो है वो बड़े अच्छे अच्छे ट्रैक, बड़ी अच्छी अच्छी फरमाइशें हमारे पास मौजूद जो हम प्ले कर रहे हैं, और अगर आप लोग भी अपनी फरमाइश पूरी करवाना चाहते हैं तो आप लोग करेंगे कुछ यूं कि आप लोगों ने डायल करना है 01157100971, हमारा रابطے का नंबर है। टाइम हुआ चाहता है 3:01 का और आपका और मेरा साथ रहने वाला है ठीक 4 बजे तक। इस साथ को शानदार बनाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। हमेशा की तरह अलियान साहब हमारे साथ मौजूद हैं दुबई से, लिखते हैं जी के जाने इस दिल का हाल क्या होगा, हदीका क्या नहीं, ये हकीका क्या नहीं है भाई, हदीका क्या नहीं है जो इस गाने की गायक हैं। बहरहाल जी, उन्होंने फरमाइश की है हदीका क्या नहीं की आवाज में, जाने इस दिल का हाल क्या होगा वो हम प्ले करेंगे लेकिन आगे चल के। उससे पहले हम बात ये कर रहे थे कि जी आज का जो हमारा टॉपिक भी है कि ज़िंदगी को गुजारने के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए कौन से ऐसे असूल हैं, क्या वाकई ही ज़िंदगी को जीने के लिए असूल भी होते हैं या नहीं। परल जी, पहले के ज़माने में या पहले के वक्त को आप जब थोड़ा सा अगर अपने जहन के अंदर लाएं, जहन के अंदर लेकर आएंगे और मेमोरी को दोबारा से ताज़ा करेंगे तो आपको याद आएगा कि जब पहले लोग कहा करते थे कि मेरे कुछ असूल हैं, मेरे कुछ रूल हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता था। क्या आपको भी लगता था ऐसा? क्योंकि हम उस चीज़ को असूलों से हट के हम उसको एक एटीट्यूड की तरफ से या इंसान की पर्सनली एक जो है ग्रूमिंग उसकी साइड पर देखते थे। बहरहाल जी, इस बात में कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है कि आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर असूल बना लेते हैं और जीने के लिए तो वो इतने हेल्पफुल होते हैं। इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे और मज़ीद बात करेंगे और बहुत सारी बातें भी होंगी और कुछ असूल आपको मैं बताने वाला हूँ ज़िंदगी को जीने के हवाले से। अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे तो यकीन कीजिए मैं लिख के दे सकता हूँ, लिख कर मैं यूँ दूँगा कि चिट्ठी लिखेंगे और आपको मिल जाएगी। तो अरल जी, वो चिट्ठी जो होगी वो आपको हमेशा ये याद करवाती रहेगी ये असूल हैं, और अगर उन असूलों के ऊपर हम कायम दायम रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी के अंदर से बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। हदीका कैनी का ये गाना है जी, हदीका कैनी, जाने इस दिल का हाल क्या होगा। ये ट्रैक जो है इस ट्रैक के उस पार दोबारा से मुलाकात करते हैं। अगर आप अपनी कोई फरमाइश पूरी करवाना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन उठाइए और हमें मैसेज कर दीजिए अपनी फरमाइश को लिख के, और उसका जो सिंगर है उसको भी लिखिएगा और सिंगर के जो नाम है वो अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि हदीका को हकीका जो कहने वाले थे अलियान साहब। शुक्रिया आपका, आपने फरमाइश की, लेकिन आप नाम को देख लीजिए, दोबारा से नोट कीजिएगा। बरल जी, ये ट्रैक एंजॉय कीजिए और इस ट्रैक के उस पार दोबारा से मुलाकात करते हैं आवाज की दुनिया में।

वेलकम बैक वंस अगेन, मुझे कहते रहना अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो फॉर द 97.1 एफएम। अभी आप सुन रहे थे जाने इस दिल का हाल क्या होगा हदीका क्यानी की आवाज में, खूबसूरत आवाज में। बहरहाल जी, हम इस गाने से पहले, इस ट्रैक से पहले बात कर रहे थे आज का जो हमारा टॉपिक था जिंदगी के असूलों के हवाले से। बहुत सारे लोग जो हैं वो जिंदगी को बगैर असूलों के गुजार रहे होते हैं और बहुत सारी ऐसी मुश्किलों को अपने गले में लटका लेते हैं जो कि बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबब के होती हैं। उसका अगर सबब, उसका अगर रीज़न देखा जाए, सुना जाए, तो सिर्फ और सिर्फ वो यही होता है कि आप लोग विदाउट एनी कंसर्न ज़िंदगी को गुजार रहे हो, बगैर किसी असूल के, बगैर किसी जो है वो अपना रूल के ज़िंदगी को गुजारना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ना सिर्फ डिफ़िकल्ट होता है बल्कि बेमानी हो जाता है। उसके अलावा जी बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ, जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि वो इंसान अपनी मोल ले लेता है। बहुत सारे ऐसे असूल हैं जी जो सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़िंदगी के ऊपर होते हैं और वो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ही देते हैं। क्योंकि जी अगर ज़िंदगी की बात करें तो ज़िंदगी हमें डेली बेस पर कुछ ना कुछ नया सिखाती है। कभी कभी इंसान जो है वो मोहब्बत सीखता है और मोहब्बत लोग सिखा जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको बहुत सारे ऐसे सबक दे जाते हैं जिसका मैं क्या ही कहूँ। कभी कभी नाकामी ऐसा इंसान को गिराती है कि दोबारा खड़ा होना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। ये बगैर असूलों के ही सारा कुछ होता है। बहरहाल जी, आज हम कुछ इस तरह के असूल डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप जिंदगी को आसान बना सकते हैं। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ, सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए कि जो आपका पास्ट है, जो कि ज़िंदगी का गुजरा हुआ वक्त है, हम उस चीज़ को लेकर बहुत बहुत देर तक सोचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा उसके अंदर खोए रहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर हम परेशान रहते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थी। और उसको वो वक़्त तो वो गुजर गया होता है, वो इंसान की चीज़ें तो उसके ऊपर से होकर चली गई होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो यादें, कहीं ना कहीं वो लोग, कहीं ना कहीं वो परेशानियाँ, कहीं ना कहीं वो लोगों के

तो मेरे लिए पहला असूल यही होगा और यही होता है कि माजी की जो अज़ियत है मैं उसको जाने देता हूँ, माजी की जो परेशानियां हैं मैं उनको भुला देता हूँ। क्योंकि जी माजी से जिस्मानी तौर पर तो इंसान आगे निकल चुका होता है, लेकिन यकीन कीजिए कि मेंटली तौर पे कहीं ना कहीं वहीं रुका होता है जहां से उसको कुछ ना कुछ बेवफाई के तासुर मिले हों या कहीं से इंसान को जख्म मिले हों। ये रिश्तेदारों की कुछ बातें हो सकती हैं, रिश्तेदारों के दिए हुए कुछ जख्म हो सकते हैं, या अपनों का कहा हुआ कुछ भी ऐसा जो कि इंसान के लिए पॉजिटिव नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं कि जी माजी को तब्दील तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यकीन कीजिए कि माजी को अपना जो मौजूदा सिचुएशन है, अपना जो हाल है, उसके ऊपर हुकूमत करने से रोका जा सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने की है, अगर आप इस बात को समझें, इसको सीखें और इससे सबक हासिल करें। क्योंकि हम लोग माजी को चेंज तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन यस अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम उन इमोशंस को, उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि हमें मौजूदा सिचुएशन के अंदर आगे बढ़ने से रोक रही होती हैं और हमें उन्होंने स्टक किया होता है। और यकीन कीजिए कि माफ़ करना हमेशा सिर्फ इसलिए नहीं होता कि दूसरा इंसान उसका मुस्तहिक है या उसका हकदार है, बल्कि कहीं ना कहीं आप जो हैं वो रहम के हकदार हैं, आप खुद सुकून के मुस्तहिक हैं, इसलिए भी माफ़ करना ज़रूरी होता है ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें और अपने आप को आसानी में कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप माफ़ नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही होती हैं, और यादें, वो चीज़ें, वो बातें, वो दिए हुए जख्म या वो जो गुजरा हुआ कल है, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सीन, परेशानी का जो सबब है वो बन रहा होता है। जैसे ही हम पास्ट से निकल के मौजूदा सिचुएशन के अंदर आते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो इश्यू होता है मेरे ख्याल से वो ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। कहीं ना कहीं आपने ये बात कही होगी, इसमें कोई शक नहीं है, आपने ये बात ज़रूर की होगी या ये बात ज़रूर सुनी होगी अपने इर्द गिर्द के लोगों से जो कि आगे बढ़ने से पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम में से बहुत सारे लोग इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए भी वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पाते कि हम ये सोचते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, या हम ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, या हम वो काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कपड़े ऐसे पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, नया कारोबार शुरू करूंगा

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

0: ईयर्स।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजा 97.1 एफएम नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान, आपका होस्ट एंड आपका दोस्त उस्मान खान। वेलकम, खुश आमदे, जी आयन उसद, बिस्मिल्ला पखैर राग ले, आस्ता लवेस्ता आओ गाना दिल तराशे। उम्मीद है वासी का जिस जहाँ जिस हाल में होगा खुशबाश होगा और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की तकदों में मशगूल होगा। बेहद शुक्रिया आप तमाम तर सवादों का शब के इन खूबसूरत से लम्हात में जिन्होंने फजा 97.1 एफएम को ट्यून प्लेस चूज कर रखा है। शब तो खैर नहीं है लेकिन आगाज तो हुआ चाहता है ना जनाब। सो उम्मीद करते हैं कि दिन भर की थकावट के बाद आप अपने घरों की तरफ रवा दवा होंगे या फिर नाइट शिफ्ट की तरफ जा रहे होंगे। कौन कहाँ किस तरह है ये तमाम तर चीजें आप मुझे बताएंगे। आइए प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपको बता देते हैं कि आपने हमारा साथ किस तरह देना है, किस तरह बताना है कि आप फला इब्ने फला हमारा साथ दे रहे हैं। नॉटिंघम या इसके गिर्दोनवा में जहाँ जहाँ जिन जिन समातों से मेरी आवाज़ टकरा रही है सभी को प्रोग्राम ड्राइव टाइम में वेलकम कहेंगे, खुश आमदेद भी कहेंगे। बंदर ने जिसको तो उस्मान खान कहते हैं, साथ रहने वाला है 2 घंटे का, इन साथ को मजीद खूबसूरत बनाएंगे आप। 01157100971 पर व्हाट्सएप पर मैसेज या चाहें तो दिल माने तो कॉल करके। अगर वीडियो ट्रांसमिशन ठीक से नहीं पहुंच पा रही तो जल्दी से गूगल पर जाइए और वहां पर जाकर लिखिए radiofaza.co.uk। आने वाली पहली वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा और मुझे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू सुन लीजिएगा। मोबाइल फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम के नाम से। ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो फजा डैप पर मुझे ट्यून कर लीजिएगा और मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप मेरे साथ साथ हैं। सुकून प्रोग्राम की शुरुआत एक ऐसी आवाज से की जाए जो आज कल से ही नहीं बल्कि एक अरसे से सबके दिलों की धड़कन बन चुकी है। पाकिस्तान के एक नामवर सिंगर आतिफ असलम की आवाज। सो आइए आप और मैं मिलकर करते हैं इस प्रोग्राम का आगाज इस खूबसूरत सी आवाज के साथ। एक अरसा ये ट्रैक जो है मेरा पसंदीदा रहा, उसके बाद वक्त के साथ साथ थोड़ा सा पीछे चला गया, लेकिन आज दिल किया कि आपको सुनाया जाए और आपसे पूछा जाए कि आपको भी ये ट्रैक पसंद है। बहुत ही खूबसूरत सी रोमांटिक सी आवाज, सभी खूबसूरत सी समातों के नाम इस ट्रैक के उस पार होगी आपसे मुलाकात। डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग फॉर 97.1 एफएम एंड

जी हाँ जनाब, वन सेकेंड वेलकम बैक। आ चुके हैं लौट के वापस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं। योर होस्ट उस्मान खान और आप सुन रहे थे इससे पहले तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया। काश मैं एक अच्छा सिंगर होता तो मैं आपको ये ज़रूर अपनी आवाज़ में सुना देता, लेकिन खैर जिस सिंगर की आवाज़ में था वो ज़्यादा खूबसूरत था। उम्मीद है कि आपने इसको ज़रूर इंजॉय किया होगा। लीजिए, ये थी मेरी फरमाइश जो मैंने अपने ही लिए अपनी फरमाइश रखी थी और मैंने इसको प्रोग्राम के स्टार्ट में ही शामिल कर दिया। अब बारी है जनाब आपकी फरमाइशों की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फरमाइश भी पूरी की जाए, खुद सुनना चाहते हैं या किसी समवन स्पेशल को सुनाना चाहते हैं, सो ज़रूर मुझे बता सकते हैं। 01157100971 पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज या चाहें तो कॉल करके, बल्कि गर्सा हो आपकी आवाज़ सुने हुए अच्छा लगे अगर आप प्रोग्राम में कॉल करेंगे तो हमें बताएंगे, मज़ा आएगा बात करके। बेहद शुक्रिया आप तमाम दर्शनार्थियों का फजा 97.1 एफएम को ट्यून प्लस चूज़ करने का और इन खूबसूरत लम्हात में मेरा साथ निभाने का। आज के प्रोग्राम में खैर बातें तो होंगी ही होंगी, लेकिन प्लेलिस्ट काफ़ी कमाल की है मेरे पास और कोशिश करेंगे कि बातें कम की जाएं और प्लेलिस्ट ज़्यादा शामिल की जाए। आपकी मर्ज़ी के ट्रैक्स हमेशा रह जाते हैं, बहुत से लोगों की फरमाइशें जो हैं वो बाद में दिल दुखता है जब नज़र आती हैं कि नहीं पूरी हो सकी। कोई बात नहीं, ये तो फिर हो जाता है अक्सर ऐसे कामों में। सियाने ने कहा था कि चांद की तरफ प्रवास करिए, अगर आप चांद तक ना भी पहुंच सके तो कम से कम सितारों को तो जरूर छू लेंगे। तो कोई बात नहीं, आपका आप पैगाम हम तक पहुंच जाता है, यही बहुत बड़ी बात है कि जरूरी ना हो कि आपका मर्जी का गाना भी प्रोग्राम में शामिल हो सके, लेकिन ये अच्छी बात है अगर हो जाए तो। आई नो वेरी वेल कि ये बहुत अच्छी बात होती है और हर इंसान को ख़ासतौर पर जब आप प्रोग्राम में मैसेज करते हैं तो आपको इंतज़ार रहता है कब आपका नाम आए और कब आपके नाम पर आपकी मर्ज़ी का गाना शामिल किया जाए। आई नो वेरी वेल, जब कभी मैं एक लिसनर हुआ करता था तो मुझे भी इस चीज़ का बड़ा इंतज़ार रहता था कि ये आरजे मेरा नाम कब लेंगे और मेरे लिए गाना कब शामिल करेंगे। जब कभी वो मेरी फरमाइश पूरी हो जाती थी तो बड़ी खुशी होती थी, लेकिन जब कभी रह जाती थी तो दुख तो होता है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी कोई भी फरमाइश को रद्द ना कर सकूं, आपकी तमाम तर फरमाइशों को पूरा करूं। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक फरमाइश करते हैं या दस करते हैं, डजंट मैटर, आप दस भी फरमाइशें करेंगे तब भी पूरी की जाएंगी। अब मैं बैठा ही यहाँ इसलिए हूँ। हाँ, ये और बात है कि आज के प्रोग्राम में बातें कम होने वाली हैं, सो नेक्स्ट बड़ा प्यारा सा ट्रैक मेरे पास मौजूद है जिसको मैं शामिल करने वाला हूँ। और ये ट्रैक किसी की फरमाइश पे था, निकाल तो मैंने लिया है, उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। अच्छा, लाइट सा म्यूजिक है, उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा।

जी हाँ जनाब, आपने सुना एक बड़े खूबसूरत रोमांटिक से ट्रैक। उम्मीद है कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा। जिस किसी की भी फरमाइश थी बहुत शुक्रिया आपका मुझे ये याद दिलाने का कि ये काफ़ी दुखी सा गाना था, लेकिन खैर कोई बात नहीं जी। दुखी दिलों का एक ही सहारा उस्मान खान बेचारा। उम्मीद है कि आप हमारा साथ निभाएंगे और अपने होने का एहसास हमें दिलाएंगे। जिस तरह बाकी लोगों की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, आपकी भी फरमाइश हम जरूर पूरी करने वाले हैं। बस शर्त यह है कि आप हमारे साथ साथ रहिएगा। ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, सो बी सेफ, बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। और कुछ मेरे जैसे सियाने लोग कहा करते हैं, कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। तो जहां कहीं भी जा रहे हैं खैरियत से जाइए, थोड़ी देर सवेर हो जाए इट्स ओके, लेकिन बहुत ही एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। आई होप सो के होप सो आई होप सो कि आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा गुजरा होगा। अगर थोड़ा सा डिप्रेस गुजरा है या फिर आज के दिन आप की बहुत से थोड़ी सी हो गई है अनबन, या आपके कोलीग्स ने आपको तंग किया है, चाय अच्छी नहीं मिली या कॉफ़ी का दिल नहीं रहा, जो भी प्रॉब्लम आपके साथ रही है आप मेरे साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। और मैं अकेला ही नहीं हूँ जो जाने पे मंजिल है, आप साथ चलेंगे तो कारवां बनता जाएगा। वो कहते हैं ना कि हर गुजरा हुआ लम्हा एक सबक देता है, हर जख्म में कामयाबी का हक अदा देता है। सो अगर आज का दिन आपका अच्छा नहीं भी गुजरा तो कोई बात नहीं, इसको एक कामयाबी का जख्म समझ लीजिएगा कि आज के दिन कामयाबी में थोड़ी सी हलचल हो गई है। कोई बात नहीं, होता रहता है। अगर आज हम इस चीज़ को लेकर बैठ जाएंगे कि गलत हुआ बुरा हुआ, तो यकीन करें कल के दिन के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। हमें कल के दिन के लिए तैयार होना है और उसके लिए हमें तमाम तर पुरानी चीज़ों को भूलना है। हौसला रख लीजिए, दुनिया बदल सकती है। खैर जी, बातें इसी तरह जारी और सारी रहेंगी, प्रोग्राम में मजीद मैसेजेस भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी जो फरमाइशें मेरे पास हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले आपकी फरमाइशों पर तवज्जो दी जाए। नाम तो हम बाद में भी ले लेंगे। एक थोड़े से पुराने से गाने की फरमाइश हमारे पास मौजूद थी और अक्षय कुमार और करीना कपूर पर पिक्चराइज हुआ ये ट्रैक, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है। मैं भूल जाता हूँ कि मुझे गाना नहीं आता, लेकिन दिल तो करता है ना। आपकी आवाज अच्छी है, चलिए आप साथ साथ गुनगुनाइए। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नोटिगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक
8: 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।

और जनाब आपने सुना नासिर खान की आवाज को, उम्मीद है कि आपको जरूर अच्छी लगी होगी, लेकिन ये आवाज थोड़ी सी देर के लिए थी। हम ज्यादा देर के लिए इनकी आवाज नहीं चलाएंगे, अभी सुबह तो इन्होंने प्रोग्राम किया। खैर बेहद शुक्रिया जी आप तमाम तर समातों को जिन्होंने फजा 97.1 एफएम को ट्यून प्लस चूज कर रखा है। मेजबान उस्मान खान आपके साथ, उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को जरूर एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप प्रोग्राम में साथ देना चाहते हैं तो 01157100971 पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल करके हमारा साथ दे सकते हैं, बता सकते हैं कि फलां इब्ने फलां हमारे साथ हैं। सियाने लोग कहा करते हैं कि हर चीज़ की कीमत होती है और इंसान की कीमत उसकी खूबियाँ होती हैं। हम सब में बेतहाशा खूबियाँ होती हैं लेकिन उनका असर बहुत कम जगहों पे हम दिखा पाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हर जगह पे हमें डीमोटिवेट करने वाले बहुत से लोग होते हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनकी बातों को लेकर डीमोटिवेट होते हैं या नहीं होते। मैं हमेशा आपसे कहा करता हूँ कि हर चीज़ से कोई ना कोई मोटिव लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आप जिस मुकाम पर भी हैं, जहाँ पर भी हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर आप सीखिए। और ख़ास तौर पर जब आप दिन का आगाज़ करते हैं, दिन से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, कोई ना कोई एक नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होनी चाहिए। वो एक रोबोटिक लाइफ से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या आज का सारा दिन हमारा रायगां गुजरा है या फिर कुछ आज स्पेशल हुआ भी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ स्पेशल नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में और एक रिबोट की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। गोया रिबोट को हम खुद बनाते हैं और उसको तमाम द कमांड्स दे देते हैं और ख़ुद फिर रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, एटलीस्ट किसी के लिए ना सही लेकिन अपने लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिससे हमारी अपनी वो तमाम तर खूबियाँ जो हैं वो निखर के सामने आती रहें। और जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है कुछ ना करने से, इसी तरह इंसान को भी जंग लग जाता है जब वो कुछ नया नहीं करता। और मेहनत तो कभी भी रायगां नहीं जाती, बस हमें अच्छे वक्त का इंतज़ार करना होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे वक्त से पहले ही थक हार कर बैठ जाते हैं और अपना इंतज़ार जो है वो ज़ाया कर देते हैं, रायगा कर देते हैं अपनी तमाम तर मेहनत को। कोशिश कीजिए कि जब भी कोई अच्छी चीज़ करें उसका थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। वो कहते हैं ना कि परिंदा जब उड़ान की ठान लेता है तो हवा को रास्ता देना ही पड़ता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया करते हैं तो यकीनन उसका रद्दअमल आपके सामने ज़रूर आता है, एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिल जाती है। तो बस कामयाबी के पीछे लग के रहिए, कभी ना कभी तो आपको ज़रूर मिलेगी, अगर आपकी ज़िंदगी में अभी तक कामयाबी नहीं है तो। और अगर है तो उस कामयाबी से भी कुछ ना कुछ सीखिए, मज़ीद कामयाबियाँ समेटिए।

हावड़ा जी, नेक्स्ट फरमाइश हमारे पास जो मौजूद है कोक स्टूडियो सीजन 14 से लिया गया ये खूबसूरत सा ट्रैक है, जो कि उस दौर में तो खैर जब ये नया नया आया तो ट्रेंडिंग पे रहा और बहुत से लोगों ने इसको पसंद किया था। अली सिटी की आवाज़ थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कम होते गए 4 साल पहले जब इसको रिलीज़ किया गया, और अब तक इसके अगर आप यूट्यूब पर जाके सर्च करें तो आपको पता चले कि 998 मिलियन व्यूज़ हैं इसके, 998 मिलियन व्यूज़, इतना पसंद किया गया ये ट्रैक। सो उम्मीद है कि अगर अभी तक आपने नहीं सुना था तो आज सुन के आपको पता चल जाएगा। लीजिए इस खूबसूरत सी आवाज़ को सुनिए, इस आवाज़ को इस बार होगी आपसे मुलाकात, जॉइंट करने में रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग फॉर 97.01 FM एंड डैब।

जी हाँ जनाब, अगलामा मजबूरी नू आन जान दी पसोड़ी नू लौट कर आ चुके हैं वापस उस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू लिसनिंग फॉर द 97.1 एफएम एंड आल्सो डैब प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव टाइम। आने वाले नए मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में जिसका नाम ड्राइव टाइम है, और उम्मीद है कि आप लोग अगर तो इस वक्त ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं फिर तो ये प्रोग्राम एग्जैक्टली आप ही के लिए है। बस थोड़ी सी हिम्मत रखिएगा, और हिम्मत इस चीज़ की रखनी है कि आपने खामोश लिसनर बनकर हमारे साथ नहीं रहना बल्कि आपने हमारा साथ भी देना है। तो कहते हैं ना कि हिम्मत वाले रास्ते बनाते हैं, डरने वाले बहाने ढूंढते हैं। जिंदगी में जीतना है तो खुद पर यकीन रखना होगा। सो उम्मीद है कि आपको अपनी जात पर तो यकीन होगा, और आज के दौर में सबसे मुश्किल तरीन चीज़ जो है ना वो किसी दूसरे पर यकीन करना है। हम लोग चाह कर भी शायद दूसरों पर यकीन नहीं कर पाते। माशरा ही ऐसा चल रहा है जी, एक तरफ से आप किसी के साथ नेकी करते हैं, दूसरी तरफ से ऐसी डस पड़ती है कि बंदे का दिल करता है कि नेक्स्ट किसी के साथ कोई अच्छा किया ही ना जाए। लेकिन क्या करें जी, हम इंसान हैं, फितरतन हमारे मजबूरी है कि हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे ही करेंगे, यही तो हमें बचपन से सिखाया जाता है। कोई बात नहीं, अगर आप आज किसी मुश्किल में हैं तो सह लीजिए, क्योंकि कल के रोशन दिन की नवीद यही है। अगर आज कुछ बुरा होगा तो कल यकीनन अच्छा होगा। कुदरत का तकाजा है कि अगर आपको किसी मुश्किल में डालेगा तो अगले दिन आपको कोई ना कोई आसानी ज़रूर मुहैया की जाएगी। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, ये तो आपने सुन रखा होगा ना। बस इसी तरह अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मुश्किल वक्त को गुजार लीजिएगा कि आने वाला वक्त आपको इससे कई गुना बढ़कर अच्छे तरीके से दिया जाएगा। और फिर मुश्किलें आती हैं सिखाने के लिए, ना कि तोड़ने और आजमाने के लिए। तो बस हर मुश्किल से कुछ ना कुछ सीखिए ताकि नेक्स्ट टाइम आप पर वो मुश्किल कभी ना आ सके। और फिर आपको पता है ना कि कामयाबी की पहली सीढ़ी जो है वो कोशिश होती है। कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजर्बा, और तजर्बे से कामयाबी हासिल होती है। सो बस हर तजर्बे से कोई ना कोई कामयाबी ज़रूर समेटिएगा। मुमकिन ही नहीं है कि आप एक अच्छा तजर्बा करें और आपको उसके बदले में कोई कामयाबी ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जनाब हमारे पास जो मैसेजेस हैं उनको हम शामिल कर रहे थे, लेकिन हाँ ओके, ये जो हमारे पास फरमाइश थी पंजाबी की, मैं चाह रहा था कि हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट शुरू होगा उस नेक्स्ट सेगमेंट को हम जरा पंजाबी में लेकर चलें, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अब फरमाइशें इतनी ज़्यादा हैं और वक्त जो है वो काफ़ी कम है। सो बड़े कमाल से एक म्यूजिक आपके लिए लेकर आया हूँ, रिमिक्स, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइएगा, समन स्पेशल के लिए है आपकी तरफ से। मिलते हैं इस खूबसूरत सी आवाज के उस पार, रहिएगा मेरे साथ साथ।

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.

जी हाँ सर, आप लौट कर आ चुके हैं वहाँ पे से एक छोटी सी प्यारी सी चुनौती कमर्शियल ब्रेक आपने जो एक ही कमर्शियल ब्रेक के बाद उसी गाने को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर किया था स्टॉप। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे खूबसूरत से लिसनर्स इस बात से थोड़े से भी नाराज हों कि हमारा पसंदीदा ट्रैक जो है वो मुकम्मल क्यों नहीं चल सका। सो ये थोड़ा सा रह गया, इसको मुकम्मल सुनते हैं, इसके उस पार से अपलोड कराएंगे, फिर मजीद गपशप करेंगे। बहुत सी बातें हैं जो आज के प्रोग्राम में आपसे करनी है, अगर वक्त इजाज़त दे तो। मैं फिर बातें ज़्यादा करता जा रहा हूँ। चलिए खैर, इस खूबसूरत से ट्रैक को मुकम्मल इंजॉय कर लीजिए, लौट कर वापस आते हैं।

जी हाँ जनाब, उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ साथ हैं और ये खूबसूरत समय शब आपने एंजॉय किया और सुबह से लेकर शाम तक म्यूजिक को थोड़ा सा चेंज किया गया जिसमें सिद्धू मूसेवाला और बोहेमिया की आवाज डाली गई। उम्मीद है कि पुराने गाने जो सुनने वाले लोग हैं ना उनको भी मजा आ गया होगा। जो आजकल की जनरेशन है सिद्धू मूसेवाला या बोहेमिया को सुनना पसंद करती

हमेशा कहा करता हूँ कि अपने बड़ों बुजुर्गों को वक्त दिया करें। हमने आज अपने बुजुर्गों को अपने घरों में शोपीस की तरह कमरे की हद तक महदूद कर दिया और यहीं से हम सबसे बड़ी गलती कर गए। फिर हम पीरों फकीरों के पास भागते हैं, बाबों के पास भागते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं पड़ती, लेकिन जो असल बरकत का ज़रिया है उनको तो हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अगर आपके घर में भी आपके बुज़ुर्ग मौजूद हैं तो खुदारा उन्हें थोड़ा सा वक्त दिया करें। उन्हें आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें आपकी कामयाबी देखकर खुशी मिलती है, लेकिन उन्हें जो सबसे अहम चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होता है आपका वक्त। और आज के माशरे में यही सबसे बड़ा आलमिया बन चुका है कि हमारे पास सब कुछ है सिवाय वक्त के। लेकिन कोशिश की रहें कि अगर आपके घर में आपके बुज़ुर्ग मौजूद हैं तो 24 घंटों में से कम एक घंटा तो आप उन्हें दे ही सकते हैं। जब आप अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, अपने बच्चों को, अपने लाइफ पार्टनर को टाइम देते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने बुज़ुर्गों को भी टाइम दें, उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि आप ही उनके अपने हैं। तो खैर जी, आप तो एहसास दिलाएंगे सो दिलाएंगे, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में उन्हें हमेशा याद रखते हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं। उनकी जवानी का वो वक्त उन्हें वापस नहीं दे सकते, लेकिन उस वक्त की जो यादें हमारे पास मौजूद हैं वो हम उनके साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। आपको पता है कि सबसे बड़ी जीत क्या होती है? सबसे बड़ी जीत ये होती है कि आपके अपने आप से खुश रहें। सारी उम्र गुजर जाती है हमें अपनों को खुश करते करते, आखिर पे जाकर यहाँ तो पता चलता है कि जो खुश हुए वो अपने नहीं थे और जो अपने थे वो कभी खुश ही ना हो सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको खुश करने की कोशिश छोड़ दें। आप हमेशा अपनी तरफ से मुकम्मल चीज़ कीजिए, दूसरों की तरफ से छोड़ दीजिए कि वो आपको उसका सिला देंगे या नहीं। आपको उसका सिला देने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है, आप अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश कीजिए कि आपकी तरफ से कभी भी कोई किसी भी तरह की कमी ना रह जाए।

सो वेल जनाब, हमारे जितने भी प्यारे अंकल और आंटी हमारे साथ साथ हैं, मैंने आपके लिए एक बड़े खूबसूरत सा 90s के दौर का ट्रैक निकाल के रखा हुआ है, उसको मैं ज़रूर शामिल करूंगा। लेकिन उससे पहले उन तमाम तर मौजूद मेहमानों को खुश आमदेद कहूँगा जिन लोगों ने अभी अभी फ़ज़ा 97.1 FM को ट्यून किया है। बेहद शुक्रिया जी आपका कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। आपको बताते चलें कि आपने यहाँ पर हिस्सा बन के खामोश नहीं रहना, बल्कि इस प्रोग्राम में मेरा साथ देना। और मुझे बताना है कि आप फ़लाँ इब्ने फ़लाँ फ़लाँ जगह से मुझे सुन रहे हैं, चाहे आप नॉटिंघम में हैं या इर्द गिर्द, जहाँ कहीं भी आप इस वक्त मौजूद हैं, अपने होने का एहसास मुझे ज़रूर दिलाइएगा। तो जल्दी से अपने मोबाइल फ़ोन को उठाइए, डायल पैड ओपन कीजिए, नंबर बताता हूँ उसको नोट कीजिएगा। द नंबर इज 0115710091। आई अगेन रिपीट दिस नंबर इज वेरी स्लोली स्लोली 0115710091। इस नंबर को नोट कीजिएगा, सेव कीजिएगा, फिर व्हाट्सएप पर जाकर कोई भी पसंदीदा गजल, नज़म, चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई बात, कोई सलाम, कोई दुआ या फिर किसी चाहने वाले के नाम कोई भी खूबसूरत सा पैगाम लिख कर भेज दीजिएगा। हवा के दोष पे लहराता गुनगुनाता सनसनाता हुआ आपका ये खूबसूरत सा पैगाम जैसे ही मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर चकमगाएगा, हजूर सुनती हुई तमाम तर खूबसूरत सी समातों की नज़र हो जाएगा। सुखर जब तक आप मैसेज करते हैं तब तक आपको सुनाते हैं ये खूबसूरत सी आवाज़। लेकिन अगर आप अपने किसी प्यारे को सुनवाना चाहते हैं जिन तक रेडियो की ट्रांसमिशन ठीक से नहीं पहुंच पाएगी, तो उनसे कहिएगा गूगली पर जाएं और वहां पर जाकर लिखें radiofaza.co.uk। आने वाली पहली वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा और हमें लाइव सुन लीजिएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से। ड्राइव करते हुए सुनने तो फजा डैप पर भी ट्यून कर सकते हैं। ये खूबसूरत सी आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक की, उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे तमाम तर अंकल और आंटीज आपके नाम। मिलते हैं इस आवाज को, उस पार रहिएगा मेरे साथ।

0: हाँ, बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

लीजिए जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक करते हैं तमाम तर सुनती हुई समातों को। मुझे कहते हैं उस्मान खान और आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो प्रोग्राम ड्राइव टाइम। हाँ, वक्त किस तरह हाथ से निकल रहा है कुछ समझ नहीं आ रही। हम अपने प्यारे प्यारे अंकल और आंटीज के लिए इतना खूबसूरत सा म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे कि बीच में कमर्शियल ब्रेक आ गई। लेकिन कोई बात नहीं जी, कमर्शियल ब्रेक भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे खाना खाते हुए बीच में पानी पीना पड़ता है ना, इसी तरह प्रोग्राम करते हुए बीच बीच में कमर्शियल ब्रेक भी शामिल करनी पड़ती है। और ये कमर्शियल ब्रेक भी तो आप ही की इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए होती है ना। हमारी मार्केटिंग टीम ने जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ के लिए आपके लिए लेकर आती है, किस जगह पर कौन सी सर्विस है, किस जगह पर कितना डिस्काउंट है, क्या चल रहा है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कहाँ से अच्छा खाना मिलेगा। ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन हमारी मार्केटिंग टीम इतनी दूर से सिर्फ आप ही के लिए तो लेकर आती है। तो जब कभी कमर्शियल ब्रेक आती है तो इसको तवज्जो से सुना करें, ये आप ही के फायदे के लिए होती है। बहुत ही खूबसूरत सी आवाज उदित नारायण की, ये आवाज मैंने आज तक बूढ़ी होती हुई नहीं देखी। आप आज भी इनकी आवाज में कोई गाना सुनते हैं तो आज भी ऐसे लगता है कि कोई यंगस्टर जो है वो इसको गुनगुना रहा है या गा रहा है। हमेशा की तरह आज की खूबसूरत सी आवाज आपकी समातों में यकीनन रसगोल रही होगी। बातें तो जारी सारी रहेंगी, अभी काफी वक्त पड़ा है हमारे और आपके दरमियान। मैं इस खूबसूरत सी म्यूजिक को खुद भी एंजॉय करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि साथ साथ आप भी इसको एंजॉय करें, हल्का फुल्का साथ साथ गुनगुनाते रहें। मिलते हैं इसके उस पार, रहिएगा साथ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी, वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
7: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर।
3: फजान 97.1 FM, हर पल आपके साथ साथ।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-772-92926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: पंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: तक। 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त। ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यार। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनमारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम NG72ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
0: bigger and better the radio station for people who love music.
6: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays.
10: Foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM।
13: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब्द के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

आपके दिल की धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slusser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slusser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slusser, Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

अय्या करूं मैं क्या सुख सुख खो गया दिल मेरा सुख सुख

0: में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या कर।

सुनते रहिए रेडियो फजा 97.8।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: लासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.
8: You are listening 97.1 FM.

Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: सूरत इतनी ऐसी थी कि मैं
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्त दा मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.